0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BB71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.

0: मेरा पता B5 सैंड हेवन अपार्टमेंट्स, नज्द तीन तलवार, बिलमुकाबिल बॉम्बे लाइट, फैसल बैंक ब्रांच। इंतहाई मुनासिब कीमत पर आरामदेह सफर के लिए राबता कीजिए। फोन 5654151617। सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका एतमाद हमारी कामयाबी।
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM।
3: बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में

0: Number one Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274306677.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

الخامسة

الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.

والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
11: or 07 Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: Na main ajami, na hindi, na iraqi o hijazi, ke khudi se maine seekhi, do jahan se beniazi. تو میری نظر میں کافر میں تیری نظر میں کافر تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس گدازی

فهال إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3 49, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान, महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड Asian Radio.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, 3AB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंग स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio. The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग services.uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: It's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
8: UK।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

तालिबे इल्म जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कह रहे थे, लेकिन आगे से जवाब नदारद, यानी कोई जवाब नहीं मिला उन्हें। ये सूरत हाल जो है ये हो चुकी है कि आज उस्ताद जो है वो आपको सलाम दुआ करता है या आपको ग्रीट करता है, लेकिन आगे से स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो अपने उस्ताद को उसका जवाब तक देना इखलाकन कह लीजिए, तहजीबन कह लीजिए, या कह लीजिए कि एहतरामन नहीं देते। हम ये सोच रहे थे कि ये जो पूरी की पूरी एक नस्ल, ये जो नौजवान हमारी बहुत नौजवान नस्ल है जो टीनेजर्स हैं, उनको अगर ये उनका हिसाब किताब है तो ज़रा आप सोचिए कि जब ये लोग बड़े होंगे कल को, और ये सिर्फ एक नस्ल की बात नहीं रह जाएगी, वो अगर खुद आज ऐसे हैं कल अपने आने वाली नस्लों को वो क्या सबक सिखाएंगे। तो ये जो बात करने का मकसद ये है सामईन कराम कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस ठीक है जो थिंक टैंक है जो बनाने वाले हैं जो पॉलिटिशियंस हैं जो पार्लियामेंट्स में बैठते हैं और जो लोग ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं उनका काम है बनाना जो भी है कानून बनाना पास करना उसको पेश करना। हमें समझ नहीं आता कि ये इन्होंने, जाहिर है इनके इल्म में भी होगा कि हमारी जो है जनरेशन हमारी नस्ल जो है वो क्या उसका रवैया है, वो किस तरफ को जा रही है, तो आया वो ये नहीं सोचते कि अगले आने वाले जो 40-50 साल या 100 साल हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं होंगे, इसी नस्ल ने आगे जाके भाग दौड़ संभालनी है, भाग दौड़। और ये कानून है दुनिया का, ये ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है, जो हमारे बुजुर्ग थे कल वो आज नहीं है, आज हम हैं तो कल हम नहीं होंगे, फिर ये लोग आगे आएंगे, तो किस तरफ को जा रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, इनको आया ये इल्म नहीं है हमारे थिंक टैंक जितने भी हैं, जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं पॉलिटिशियंस कुछ भी हैं जो गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट में नहीं भी हैं, जो पुर असर अफराद हैं जिनका बड़ा असर होता है, उन जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जिनकी आवाज़ पे लबैक कहा जाता है, आया वो ये चीज़ नहीं सोचते कि हमने तो अपनी नस्ल का जहां एहतराम ही बाकी नहीं, जब उस्ताद की इज्जत जिस मुआशरे में नहीं होगी तो बताइए कि वो मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है। एक सादा सा सवाल है, एक सादा सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सोचने की बातें नहीं है, आप सिर्फ इतना सोचिए कि वो कहते हैं ना, वो शुरू से हम तो सुनते आए पढ़ते आए और अमल भी किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, कि जी बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद, कि जो बा अदब होता है जो एहतराम करता है कतअ नज़र इसके कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, और फिर कुजा के उस्ताद की इज्जत ना की जाए, उस्ताद की बात ना सुनी जाए, मुंह दर मुंह उनको जवाब दिया जाए, हत्ता कि उनको इतना इग्नोर किया जाए कि सामने सुबह का आगाज आपका स्कूल शुरू होने वाला है, बच्चे बच्चियां गए हैं, टीचर सलाम दुआ कर रहे हैं, लेकिन आगे से स्टूडेंट्स जवाब नहीं, हत्ता जवाब देना भी गवारा नहीं, आया कुजा के वो खुद से सलाम करें अपने टीचर को या एहतराम पेश करें या रुक जाएं या कुछ। तो सामईन कराम, क्या आप समझते हैं कि ये जो असूल व ज़वाबित हैं, ये जो कवानीन हैं, ये जो खुली छुट्टी हमने दे दी अपने बच्चों को कि जी उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है बिल्कुल सही कि मारने की बात थी, मत मारिए, प्यार से आराम से तरीके से समझाइए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से तरीके होते हैं बच्चों को सिखाने के, बच्चों को समझाने के, लेकिन ये इस किस्म की आज़ादी या इस किस्म का बिहेवियर या बर्ताव बर्दाश्त करना वो क्या करेंगे। शायद वो थोड़ा बहुत घर के अंदर हो सकता है, कोई माँ बाप दादा दादी नाना नानी अगर हों बुजुर्ग तो उनका मजबूरन, जिसे कहते हैं ना मजबूरन, इसलिए हम कह रहे हैं मजबूरन कि अगर फितरत में ये चीज़ हो, अगर ये चीज़ आदत में हो तो फिर उस्ताद भी इसी ज़ुमरे में आता है, फिर उसका वो भी एहतराम करेंगे, लेकिन अगर वो उस्ताद का एहतराम नहीं कर रहे तो फिर घर में अगर वो थोड़ा बहुत किसी का अदब लिहाज कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो या तो वो मजबूरन कर रहे हैं या फिर वो वक्ती सिर्फ बात है कि ठीक है जी वहाँ उन्हें खुश कर दिया। और ये हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं जो बहुत शुरू से यहाँ पे मौजूद हैं, जिन लोगों को 30-30, 40-40 साल हो गए अपनी उम्रें, उन्होंने आधी ज़िंदगी गुजार दी यहाँ पे माहौल में रह के, बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ देखा, तो यकीन कीजिए कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था और हम ये सोच रहे थे कि फिर इस कौम का इस मुल्क का फिर कोई बात है ना कि अल्लाह ही हाफिज़ है, जहाँ एहतराम उठ जाए ना बड़े छोटे की तमीज़ उठ जाए।

0: जाए, खत्म हो जाए। और वही बात है कि वो पहले भी हम कहते रहते हैं कि एफ वर्ड इस तरह इस्तेमाल होता है जैसे ये वो क्या है कि पता नहीं बहुत अच्छा लफ्ज़ है जिसे लोग एक जुमले में चार चार छः छः दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। लड़की है, लड़का है, हत्ता के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस एफ वर्ड को, अब जैसे तकिया कलाम कहते हैं ना, फलां बंदा जो है वो बार बार इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है। हो सकता है हमारा भी तकिया कलाम हो, कोई इंसान को खुद से पता भी नहीं बाज़ात होता। लेकिन चलिए उन चीज़ों को छोड़िए, तकिया कलाम होना तो बहुत दूर की बात है। एफ वर्ड अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे अपनी जबान में, अपने जुमलों में, कि आपने दो जुमले बोले तो चार छः दफ़ा आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ये कौन सी तहजीब है? ये कहाँ की आप कह लीजिए कि क्या उन डिग्रियों का फ़ायदा, क्या उस पढ़ाई का फ़ायदा, क्या उस निज़ाम तालीम का फ़ायदा? ज़रा सोचिए कि अगर हमारे बच्चे हैं या जो भी है कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी के बच्चे हैं, नेटिव ही हैं क्यों खा वो, तो किस तरफ को जाएंगे वो, क्या सीखेंगे वो? कुछ समझ में नहीं आता। हमें तो बड़ा अजीब सी ये बात लगी, क्योंकि जब तक हमने यहाँ स्कूल्स में पढ़ाया था टीचर की इज्जत होती थी, टीचर को सलाम दुआ पेश की जाती थी, उनका एहतराम किया जाता था। लेकिन ये तो अजीब वो गरीब चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही हैं। तो आप लोगों को भी, अगर आपके बच्चे हैं छोटे स्कूल गोइंग हैं, अगर आपके कॉलेज गोइंग हैं, अगर आपके, चलिए बच्चे बड़े हो गए तो आपके पोते पोतियां, नवासे नवासियां, ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो तो ज़रूर होंगे, तो थोड़ा बहुत हम सब का सोचना बहैसियत माशरे के एक फ़र्द के ये काम बनता है कि हम इस बारे में सोचें और इस बारे में आवाज़ अपनी बुलंद करें, उठाएं। स्कूल वालों से पूछें कि क्या तरबियत हो रही है। पहले तो अपने आप को चेक करें वालिदैन कि जी हम, क्योंकि सबसे पहला मदरसा बच्चे का जो होता है माँ की गोद होती है, तो उसके बारे में देखिए कि आपका क्या रवैया है, आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। आप भी वही यू यू एंड यू सिखा रहे हैं या आप अदब आदाब बता रहे हैं कि ये मामी हैं, चाची हैं, चचा हैं, ताया हैं, ये खालू हैं, ये फला हैं, जो भी रिश्ता है किसी का, तो वो अपने मॉम डैड को भी बस एक ही कैटेगरी में रखते हैं या फिर कुछ अदब एहतराम बाकी है? ये बहुत ज़रूरी है सामईन कराम, और ये बहुत आई ओपनिंग चीज़ें हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए। आज अगर नहीं सोचेंगे हम और आप, तो फिर ये नस्ल तो बस इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो बस तबाही में कसर कोई रह नहीं जाती, कोई चीज़ हमें नहीं लगता कि फिर कौन सी चीज़ इनको बचा पाएगी माँ सिवा अल्लाह ताला के, क्योंकि वही फेर सकता है हालात दिलों के भी, कौमों के भी। लेकिन हमारे कुछ हालात ऐसे अच्छे नज़र नहीं आते कि ये कौम किस तरफ जाएगी। बहुत बहुत ज़्यादा तादाद है, कुछ कम लोग होते ना फिर तो चलिए इंसान कह सकता है कि जी हाँ ख़राब अच्छे बुरे लोग सब तरह के होते हैं, हर माशरे में होते हैं। लेकिन जब हर तरफ आपको यही चीज़ मिले, आप कभी बस में सफ़र कीजिए, आपके बच्चे पीछे बैठ के, यानी कि हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे बैठ के क्या कर रहे होते हैं, गाली गलौज, ये उनका तौर तरीका है। तो ये बात सोचने की है, समझने की है, इस बात पे गौर कीजिएगा, और खुदारा इस बात पे आप अपने बच्चों से भी बात कीजिए, अगर अभी तक नहीं की तो उनको सिखाइए, उनको समझाइए प्यार से बैठ के, और फिर स्कूल वालों से भी जाके अथॉरिटीज से बात कीजिए कि जी ये बच्चे क्यों इस तरह से हैं। इसलिए कि ज़्यादा वक्त तो बच्चों का स्कूल में गुजरता है, 5 घंटे 6 घंटे, उसके बाद वो आते हैं, फिर मसाजिद जाना होता है, 1-2 घंटे वहाँ पे निकल गए, तो पेरेंट्स के पास बहुत कम बच्चे रहते हैं, ये हमें भी इल्म है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही नहीं कर सकते, उनका काम है कि वो अपने बच्चों को उन पर चेक रखें, जिसे कहते हैं ना चेक एंड बैलेंस, लाजिमन वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कल कुछ जवाबदेह आप भी हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कूल नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट पे सब कुछ आप नहीं छोड़ सकते। बहरहाल कमर्शियल ब्रेक का वक्त बहुत करीब है, समीरा साहिबा आपकी कॉल का इंतजार रहेगा, और ब्रेक के बाद समीरा साहिबा आपका फरमाइशी गीत आपके लिए, सुनते रहिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: ब्रेडफोर्ड नंबर 1 एशियन कम्युनिटी रेडियो, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM, DAB+, मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio. Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
5: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
7: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
7: आपकी शान
5: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
10: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
5: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
10: मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी हाँ, ज़मीन कलाम खूबसूरत सा आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, और ये फरमाइश थी मोहतरमा समीरा साहिबा आपकी। यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हुई होंगी अपने गीत के साथ। और जरका साहिबा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत नवाजिश, आपकी भी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। जरका साहिबा, आपने जिस चीज़ की फरमाइश की है, कौन सा था, इश्क दी गली बिच, तो वो आपके लिए हम लगाने चाह रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक कलाम है जो उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा, वो हम आपके गोश गुजार करते हैं। उसके बाद जरका साहिबा आपका फरमाइशी गीत। तो अल्लामा इकबाल जावेद से क्या कहते हैं अपने बेटे से, गारत गरे दी है ये जमाना है इसकी निहाद काफिराना, दरबारे शहनशाही से खुशतर मर्दाने खुदा का आस्ताना, लेकिन ये दौरे साहरी है अंदाज है सबके जादुआना, सर चश्माई जिंदगी हुआ खुश्क बाकी है कहाँ माए शबाना, खाली उनसे हुआ दबिस्ता थी जिनकी निगाह ताजियाना, जिस घर का मगर चराग है तू है उसका मजाक आरिफाना, जौहर में हो ला इलाह तो क्या खौफ, तालीम हो गो फरंगियाना, शाखे गुल पे चहक व लेकिन कर अपनी खुदी में आशियाना, वो बहर है आदमी के जिसका हर कतरा है बहरे बेकराना, दहकान अगर न होता नासा हर दाना है सत हजार दाना, गाफिल मुंशी न वक्त बाजी अस्त वक्त हुनर अस्त तो कार साजी अस्त। ये सामीने कलाम पहला हिस्सा था इसका, उन्होंने तीन हिस्से लिखे इस लंबी सी नज्म के, बकिया हिस्से आपको बाद में सुनाएंगे। इस वक्त चलते हैं जरका साहिबा की फरमाइश की जानिब जो उन्होंने की। तो लीजिए जरका साहिबा, और आपकी कॉल का हम इंतज़ार करेंगे कि आप बताइएगा हमें टे से शुरू होने वाले अल्फाज। समीरा साहिबा, आपकी कॉल के भी हम दोबारा मुंतजर हैं कि आप बताएंगी टे से शुरू होने वाले अल्फाज। तो लीजिए फ़िलहाल जरका साहिबा की फरमाइश।

0: इश्क दी गली विच नो एंट्री
1: जी, इसलिए गीत गलत लगा कि वो हमने इश्क दी गली विच लिखा था तो ये वाला गीत आ गया, हमने समझा यही है। माजत खां है जरका साहिबा, बहरहाल चलिए अब इसको सुन लीजिए, इसके बाद हम आपका गीत लगाते हैं।

जी जरखा साहब, आपने अपना फरमाइशी गीत सुन लिया होगा। माजरत खा है कि पहले जो लिखा तो वो गीत और निकला, ऐसा हो जाता है कभी कभार, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि आपने फरमाइश अपनी सुन ली होगी। हमने पूरी कर दी आपकी फरमाइश, और अब आपने हमें बताना है कि टे से शुरू होने वाले कौन से अल्फाज बनते हैं। हम आपकी कॉल के मुंतजर रहेंगे। समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, तहे दिल से आपके मशकूर ममनून। देखिए ना, इंसान को जब उस तरफ लगा दिया जाए तो इंसान का जहन फिर सोचना शुरू हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। असल बात यह है, पहले हमने भी सोचा था कि टे से कितने अल्फाज शुरू होंगे, लेकिन अब देखिए इतने अल्फाज हो गए, ये क्या कहने हैं। और समीरा साहिबा, बड़ी मेहरबानी, आपने कौन से अल्फाज बताए इस दफ़ा, नए अल्फाज बताए आपने। आपने बताया कि टिकटिकी बांधना होता ना, टिकटिकी बांध के देखना, ताली, ताली का दरख्त आपने बताया, फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज बताया आपने, टेंटवा, कहते हैं ना टेंटवा दबाना किसी का, वो टेंटवा। फिर आपने बताया ठान लेना, टपाल एक नाम है चाय का, टाई आपने बताया जो मर्द हजरात लगाते हैं कोट के साथ। फिर आपने बताया टाकरा, टे से टाकरा, टे से टॉफी, टे से टुकर टुकर देखना, टे से वो जो टाइफाइड बीमारी है, जाहिर है उसे टाइफाइड ही कहते हैं, उर्दू में वैसे तपेदिक कहते हैं, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन बहरहाल टाइफाइड। और टिच बटन, ये आपने अल्फाज बताए टे से शुरू होने वाले, और जो हमें याद है गुज़िश्ता हफ्ते आपने बताया था कि आप जब सब्जी बना रही थी, आप सालन बनाने के लिए, तो आप टिंडे छील रही थी, तो एकदम आपके जहन में ख्याल आया कि टिंडे भी तो टे से शुरू होते हैं, और फिर आपने कॉल भी की, आपने वो लफ्ज़ बताया भी टे से टिंडे, तो हमें वो याद है अभी तक। तो बहुत शुक्रिया समीरा साहिबा, और आप भी सामीन कराम इस सिलसिले में शामिल हो सकते हैं हमारे ज़खीरा अल्फाज में, और हमारे सामईन के ज़खीरा अल्फाज में इजाफा कर सकते हैं टे से जो हरूफ तहजी है उर्दू का, उससे शुरू होने वाले अल्फाज हम आपसे पूछ रहे हैं। टे से टोपी वाला टे, तो तहे दिल से मशहूर समीरा साहिबा, लगता है पहले ही बिला मुकाबला आप जीत रही हैं, तो लेकिन देखिए, देखते हैं, अभी तो काफ़ी वक्त है हमारे पास। आप सामीन कराम 01274306677 के ज़रिए शामिल होके आप बता सकते हैं कि आपके जहन में कौन से टे से शुरू होने वाले अल्फाज हैं। और जो इकबाल ने अपने बेटे जावेद इकबाल को कहा, उसका दूसरा हिस्सा है, सीने में अगर ना हो दिले गर्म, रह जाती है जिंदगी में खामी, नखचीर अगर हो जीरक और चुस्त, आती नहीं काम कोहना दामी, है आबे हयात इसी जहां में शर्त, इसके लिए है तिश्ना कामी, गैरत है तरीकते हकीकी, गैरत से है फुक्र की तमामी, ए जाने पिदर नहीं है मुमकिन शाही से तरद्दुद की गुलामी, नायाब नहीं मदाय गुफ्तार, सदा नूरी और हजार जामी, है मेरी बिसात क्या जहां में बस एक फुगान जेरे बामी, एक सदके सिदके मकाल है कि जिससे मैं चश्मे जहां में हूं गिरामी, अल्लाह की देन है जिसे दे मीरास नहीं बुलंद नामी, अपने नूरे नजर से क्या खूब फरमाते हैं हजरत निजामी, जाए के बुजुर्ग बायद बवद फरजंदी मन नदारत सवद। ये सामीन कराम दूसरा हिस्सा था जो इकबाल ने अपने बेटे को पैगाम दिया। लीजिए अब ये बहुत ही खूबसूरत सा एक और पुराना गीत जो है वो आप सब सुनने वालों के लिए।

0: जी हाँ, समीने कराम, बहुत खूबसूरत सा पुराना सा गीत आपने सुना, सदाबहार गीत। और जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया था कि आज के प्रोग्राम में आज का जो इंतखाब है वो बहुत पुराने पुराने गीतों पर मुश्तमिल होगा, जो सदाबहार गीत कहलाते हैं। आप कह लीजिए कि ब्लैक एंड वाइट ज़माने के, या उन्हें गोल्डन गीत भी कहा जाता है, इसलिए कि आज भी वो कानों को उतने ही भले मालूम होते हैं जितने उस वक्त लोग उन्हें पसंद किया करते थे। इसलिए कि बहुत पीछे सोच होती थी, कहानी होती थी, बड़े खूबसूरत जज्बात और एहसास होते थे जो कि बड़े देरपा होते थे। इस तरह नहीं होता था कि जी आज वो, आजकल के आप अक्सर गाने सुनिए, यकीन कीजिए हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। मिसाल देते हैं ना, जैसे वो गाने हैं कि जी बस एक आज की शाम मेरे साथ गुजार और इस तरह उस तरह, तो वो फिर क्या कैफियत होंगी और क्या उनका दिल पे असर होगा। हर एहसास, हर कैफियत जो इंसान के अंदर उठती है ना, जो भी जज्बा किसी के लिए भी हो, खा वो महबूब के लिए हो, खा वो आपके किसी अपने अजीज के लिए हो, आपके वालिदैन का है, बच्चों का है, औलाद का, तो वो देर पा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि बस वक्ती जज्बा है, एक उबाल सा आया जज्बात में और उसके बाद जज्बात ठंडे हो गए, ऐसा नहीं होता। वो साथ हमेशा जिंदगी भर का होता था, जिंदगी भर का साथ निभाने की कस्में जो खाई जाती थी, हर फिल्म में यही कहानी होती थी, यही चीज होती थी और खूबसूरत लगती थी क्योंकि हकीकी जिंदगी की वो तस्वीर पेश करती थी। तो आज शायद जो नए गीत हैं वो आज के वक्त की तस्वीर पेश करते हैं, यही हो सकता है, यही हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं सामीने कराम। बहरहाल एक बहुत और खूबसूरत सा सदाबहार गीत हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में। उससे पहले बता दें, अजरा साहिबा आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया अजरा साहिबा, बहुत आपकी नवाजिश, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून, इसलिए कि आप जो है ना काम में मसरूफ होती हैं बहुत ज़्यादा, बाज़ूकात आप बिज़ी होती हैं, उसके बावजूद जब भी आपको मौका मिलता है आप प्रोग्राम में शामिल हो जाती हैं। तो अज़रा साहिबा शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, आपके लिए ये गीत पेश करेंगे। लेकिन अब क्या देखा जब घड़ी की जानिब तो कमर्शियल ब्रेक का वक्त बहुत करीब है। बहरहाल हम छोटी सी एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद ये गीत खूबसूरत सा मुकेश का अज़रा साहिबा आपके नाम करेंगे, आपकी नज़र करेंगे। और सामीन कराम आप समाप्त फरमा रहे हैं ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे, साथ ही साथ ऑनलाइन पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुंचती है और आप हमारे मोबाइल ऐप पर भी हमें सुन पाते हैं। और आपसे मुखातिब है आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा। हर हफ्ते को हम यहाँ होते हैं, यानी हफ्ते के दो दिन मंडे एंड ट्यूसडे हमारा प्रोग्राम होता है 10 बजे से लेके तकरीबन 1 बजे तक। तो चलिए फिलहाल चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और टे से शुरू होने वाले अल्फाज अगर आप बताएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी।
1: It's number one Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
9: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
0: سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، آن لائن پہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو اسمارٹ فون ایپ ہے اس کے ذریعے بھی، اور آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق پروگرام انتخاب کے ہمراہ۔ جی ہاں سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ اب تک کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا، خواب و گیتوں کی شکل میں تھا یا علامہ محمد اقبال کی شاعری ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اس کے علاوہ جو حروف تہجی ہیں، ٹے سے شروع ہونے والے، یعنی ٹے سے، جیسے ٹوپی ہے، ٹماٹر ہے، تو ایسے الفاظ جو بہت کم سننے کو ملتے ہیں، ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اس حوالے سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے نا وہ زندہ و جاوید رہے، ایسے ہی لوگ بولتے رہیں، سنتے رہیں، کیونکہ یہ بڑی تہذیب یافتہ زبان ہے، ادب آداب کا خیال کرنے والی زبان ہے، اس لیے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ چلیے، ہمیں فون کیا تھا عذرا صاحبہ نے بریک سے پہلے، اور ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جی آپ کے لیے آنے والا جو گیت ہوگا آپ کے نام ہوگا، تو عذرا صاحبہ یہ خوبصورت سا گیت آپ کے نام، آپ سنیے گا، اور اس کے بعد یاد رکھیے گا سامعین کرام کہ دستک نہ دو جو ناول ہے اس کا اگلا حصہ جو ہے 12 باب، وہ آپ کے گوش گزار ہم نے کرنا ہے، تو ضرور اس حصے کو سنیے گا، لیکن پہلے یہ گیت سنیے۔

अर्जुमन ने भी एक ब्राउन रंग का जूता जल्दी से पसंद कर लिया, मगर गेती का दिल किसी एक चीज पर ठुकता ही ना था। अभी ब्राउन पसंद आया है, अभी काले पर दिल आ गया, साथ ही मल्टी कलर पर भी नजर है। एक तरफ सुर्ख पर दिल मचला जाता है, सांग इधर से उधर फिरते फिरते तंग आ गया। अब सिर्फ वही जूते दिखाने बाकी थे जो वर्कशॉप में रखे थे। सांग ने किसी को पुकारा, लियोचू, और फिर चीनी जबान में कुछ कहा। थोड़ी देर की खड़बड़ के बाद 10-12 डिब्बों का ऊंचा सा मीनार बनाए लियोचू अंदर दाखिल हुआ। अरे हाय, ये यहां भी हुआ करता है। ए, तुम जूते वाले भी हो? गेती ने बेटों की बातें शुरू कर दी। हाँ कुकू, मैं जूते वाला भी हूं। आम चीनियों से जरा निकलता हुआ कद और निस्बतन ऊंची नाक वाले लियोचू ने उसके करीब चटाई पर दो जानू बैठकर जूता उसके पैर में डालते हुए कहा, मैं सुन रहा था तुम बहुत गड़बड़ कर रही थी। तुम लियोचू हो, चूहे खाते हो? ठोट पे सिरी, शहरयार ने मजबूरन उसको घुरका। बोलने दीजिए, ये ऐसी ही बातें करती है। मालूम होता है तुम एक दूसरे को खूब जानते हो। मैं आपके यहाँ चीनी दस्तकारी का सामान लेकर आता था, और शहरयार ने सोचा कि इस लड़के की अंग्रेजी आम चीनी दुकानदारों से ज्यादा साफ और बेहतर है। और बड़े भैया, जब मैं अस्पताल में थी ना, तो ये रोजाना आकर मुझे खूब हंसाता था। बिल्कुल बंदर है, लंगूरी बंदर। गेती ने लियोचू की तरफ देखकर जबान निकाल दी। बको मत, शहरयार ने फिर टोका, जूता पसंद करो। उसने फिर नाक भू चढ़ाई। बस कुकू, ये जूता ठीक है, अब मत उतारना इसको। तुम्हारे लिए सिंड्रेला का जूता तो आने से रहा। गेती ने चुप करके गर्दन झुकाकर लियोचू की बात मान ली। सांग काउंटर पर जा बैठा था और चीनी दुकानदारों की आदत के मुताबिक जूतों की असल कीमत से दुगनी और चुगनी कीमतें बता रहा था। शहरयार ने उसकी आदत को जानते हुए उससे झकझक शुरू कर दी। वो दुकानदारों से हुज्जत का कायल न था, लेकिन चीनियों से भावताव करना उसको बहुत अच्छा लगता था। उनका झुंझला झुंझला कर, तू तू करके टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना उसको बहुत पसंद था, और आज भी यही हुआ। सांग बकता झकता उठकर अंदर वर्कशॉप में जा बैठा कि अब इससे आगे एक पाई कम ना होगी, वरना जूते रख दो। शहरयार मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे घुस गया और फिर बहस शुरू कर दी। सिगरेट केस निकाला, खुद लिया और सांग को पेश किया। सिगरेट लेते ही सांग ने एकदम 4 रुपए कम कर दिए, मगर भाव अभी जारी था। यकायक शहरयार की नजर कोने में रखे हुए एजल और उस पर लगी हुई ना तमाम पेंटिंग्स की तरफ गई और उसने सांग से पूछा, तुम्हारे यहाँ सिल्क पर पेंट भी होता है? सांग अपनी बात अधूरी रह जाने पर जल भुन गया। ये इसी अहमक की हमाकत है, उसने लियोचू की तरफ इशारा किया। जरा मैं देख सकता हूं? शहरयार ने पुर इश्तियाक लहजे में सवाल किया। सांग को जुजबुज देखकर उसने जूतों के दाम अदा कर दिए। मसूद और अर्जुमन तो बाहर ही खड़े थे, मगर गेती शहरयार के साथ अंदर आ गई थी। सांग रसीद काटने वापस काउंटर पर गया तो लियोचू ने अपनी पेंटिंग शहरयार के सामने रख दी। वो खामोश और तहसीन आमेज नजरों से उसको देखता रहा। तुम इसको बेचते हो? नहीं, मैं तो सिर्फ शुगलन ये काम करता हूं। और भी पेंटिंग की हुई चीजें हैं? सिर्फ चंद एक। मुझे अपने शौक के तकमील के लिए वक्त ही कब मिलता है? लियोचू की आवाज में हसरत दिल की बाजगश थी। मिस्टर लियोचू, अगर मैं तुमसे ये ना तमाम पेंटिंग खरीद लूं, मेरा मतलब है मुकम्मल होने के बाद, तो तुम इसकी क्या कीमत लोगे? लियोचू सोच में पड़ गया। दूसरे लम्हे शहरयार को महसूस हुआ कि लियोचू इस किस्म की पेशकश के लिए मुतवक्के न था, इसलिए हक्का बक्का नजर आ रहा था। लियोचू ने बोलने की कोशिश की, उसकी आवाज में लुकनत थी और वो ये तय न कर पा रहा था कि उसकी क्या कीमत बताए। शहरयार मुस्कुराया। मैं तालिबे इल्म हूं, ऐसी कीमत बताओ जो मैं अदा कर सकूं। अभी तो ये नामुकम्मल है, लियोचू ने बात टाली। फिर क्या हुआ, दो एक दिन में मुकम्मल करके दे दो, मैं आकर ले जाऊंगा जब कहो। सफदर नहीं चाहता था कि सांग के इल्म में इस किस्म का कोई मामला हो, जल्दी से बोला, आप मुझे पता दे दीजिए, मैं खुद पहुंचा दूंगा। मेरा पता? अगर तुम इसको जानते हो, उसने गेती की तरफ इशारा किया, तो मैं इसका भाई ही तो हूं।

0: वो दोनों ही गेती की तरफ मुड़े। वो कोने में एक मेज पर रखी हुई किसी चीज के देखने में महव थी। इनको देखकर बोली, बड़े भैया प्लीज मुझे ये ले दीजिए। ये क्या है? शहरयार ने बज़ाहिर रबर के इस खिलौने की तरफ देखा। कितनी, देखिए ना कितनी प्यारी है, वो उसको छूने ही को थी। ए बेबी इसको मत छूना, ये अभी बिल्कुल गीला है। चीनी तड़प गया। गीला? शहरयार ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, ये चू खानदान के अहद की रकासा है और चावल के आटे को गूंद कर बनाई गई है। ये किसने बनाई है? मैंने। अब शहरयार ने बड़े गौर से देखा। चीनी रकासाओं के अंदाज पर सवारे हुए बाल, एक हाथ में छतरी और दूसरे में पंखा, बालों में सजाए हुए फूल, इन सब जुजियात की नफासत और नजाकत तो एक तरफ थी, रकासा के चेहरे पर उसके तबके और दौर की जिंदा और महसूस कैफियत मौजूद थी। शहरयार का जहन तारीफ व तहसीन के अल्फाज से खाली था और वो एक लफ्ज कहे बगैर सोचता रहा। तारीख तमद्दुन के ये कदीम तरीन वारिस अब भी बहुत खूब हैं। क्या तुम ये भी हमारे हाथ नहीं बेचोगे? ये सांग की अमानत है, ये मैंने उसके हुक्म से एक बहुत बड़े यूरोपियन अफसर के लिए बनाई है। मगर गेती मुस्तकिल ललचाई और मचली हुई नजरों से गुड़िया की तरफ देखती रही। कुकू तुम फिक्र ना करो, मैं तुमको दूसरी बना दूंगा। कब? जल्दी। क्या वाकई तुम अपना वादा पूरा करोगे? शहरयार ने पूछा। चीनियों के वादे इतने बूदे नहीं हुआ करते, यकीन रखिए दोनों चीजें परसों तक हर सूरत में आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक बात है, मेरा इंतजार 8 बजे रात के बाद करना, मैं इस दुकान का मुलाजिम हूं। शहरयार जिस वक्त सांग की दुकान से आकर मोटर में बैठा तो सोच रहा था, ये चिपटे चेहरों और तिरछी आंखों वाले बोने जहनी तौर पर दियो पैकर होते हैं। और फिर उसने सोचा, मगर ये चीन के ख्याल के साथ साथ हमारे जहन में अफ्यून का तसव्वुर क्यों आने लगता है? अफ्यून की गोलियां निगलना और चर्स के दम लगाना उनका महबूब मशगला ना बन गया होता तो ना जाने ये क्या कर चुके होते। और लियूचू यानी सफदर यासीन अपनी नामुकम्मल पेंटिंग के साथ ने खड़ा था। उसके तसव्वुर में अफसुरदा निगाहों, दबीज मखरूती उंगलियों और गावदुम कलाइयों वाली खातून 10 रुपए का हकीर और बेजान नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कह रही थी, ये लो इन खिलौनों की कीमत, और हाँ सुनो, अब हम 2-3 दिन में प्लास्टर करवा कर उसको घर ले जाएंगे। अब तुम्हारी तकलीफ करने की जरूरत नहीं। तकलीफ करने की जरूरत नहीं, वो हकारत से मुस्कुराया। ना हक मैंने कुकू के इस भाई से वादा कर लिया, मुझे वहां उन मगरूर लोगों में जाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर उसके कानों में अपनी ही आवाज गूंजी, चीनियों के वादे इतने बोदे नहीं हुआ करते। ठीक है, चीनियों के वादे इतने बोदे नहीं होते, वो मुस्कुराया और चमड़ा काटने की मशीन की तरफ मुड़ गया। जी समीने कराम, ये अगला बाब था नावल जो है अल्ताफ फातिमा का, दस्तक ना दो। ये इसका जो अगला बाब था हमने आपके गोश गुजार किया, और जैसा कि हमने इसके तारुफ में आपको बताया था कि ये नावल जो है ये तब लिखा गया जब बरे सगीर पाक व हिंद इकट्ठा एक मुल्क था और चाइना से और न जाने कहाँ कहाँ से लोग अपना रिस्क कमाने के लिए इस मुल्क में आया करते थे। और ये सफदर लियूचू जो है ये है तो चाइना का लेकिन मुसलमान लड़का है, फेरी भी लगाता है, अपनी माँ के बने हुए चीज़ें बेचता है, हाथ से बनाई हुई कढ़ी हुई, और साथ ही साथ वो सांग जो एक और चीनी बंदा है उसकी दुकान पर काम भी करता है।
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
3: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
3: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
3: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
8: saferaider.co.uk।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
6: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: Yeah. जी सामीन कराम, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात आप समाप्त फरमा रहे हैं अपनी मेजबान उस्मा अशफाक के हमरा, और उम्मीद करते हैं कि अब तक का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, ख्वाबो गीतों की शक्ल में था या अलामा इकबाल की जो शायरी है वो हम आपके गोश गुजार कर रहे हैं। अभी हमने आपको ब्रेक से पहले मोहतरमा अल्ताफ फातिमा का लिखा हुआ नावल दस्तक न दो, उसका अगला बाब पढ़ के सुनाया, और हमें फ़ोन किया था इकबाल साहब आपने, आपने किशोर कुमार के किसी गीत की फरमाइश की है, तो लीजिए ये खूबसूरत सा गीत जो है किशोर कुमार की आवाज़ में आपके लिए पेश करते हैं। आप भी सामीने कराम प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो हमारे स्टूडियोज का नंबर है 01274306677, इस नंबर के जरिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और हम आपसे आज पूछ रहे हैं, हमारा हरूफ तहजी जो है आज का टे, टे से जैसे टमाटर होता है, जैसे टोपी, लेकिन इतने आसान अल्फाज नहीं, ऐसे अल्फाज बताइए कि जो ज़रा कम कम सुनने को मिलते हैं, जैसे समीरा साहिबा ने बहुत से खूबसूरत अल्फाज बताए, जरका साहिबा आपने बड़े अच्छे अल्फाज बताए, तो समीर कराम आप भी इस सिलसिले में शामिल हो सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे सिर्फ ये होगा कि हमारे और आपके ज़खीरा अल्फाज में मज़ीद इजाफा होगा, और यही इस खेल का, इस सिलसिले का जो बुनियादी मकसद है वो यही है। तो लीजिए ये खूबसूरत सा गीत इकबाल साहब आपके लिए।

देख ले जिस दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता।

बड़े शहर में है चोर बड़े, जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े, अपने व्यवस्थाद यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े। माइकल तो बस लोगों की खाली जेब कतरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

साल महीने के लिए खाने पीने के लिए, अरे साल महीने के लिए खाने पीने के लिए कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए। लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

जी हाँ, ज़मीन कराम, बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना आप सबने और हमने भी सुना, बहुत पुराना सा गीत था। शुक्रिया इकबाल साहब कि आपने किशोर कुमार के गीत की फरमाइश की और ये खूबसूरत सा गीत हमें सुनने को मिला और बहुत अच्छा लगा। यकीन कीजिए, अगर आप लोग लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं तो हम भी यहाँ बैठे लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं इन पुराने सदाबहार गीतों के साथ। इकबाल साहब, आप दोबारा तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। लेकिन मसला ये है कि आपने जितने भी अल्फाज बताए वो ते से शुरू होने वाले हैं। आपने जो भी अब हमने लिखे नहीं, क्योंकि वो ते से है, ते से

तो गुजर गया गुज़िश्ता से व्यवस्था जो हफ्ता था, यानी 2 हफ्ते पहले, तब हमने तेज से अल्फाज पूछे थे, जैसे तख्ती है, तोहफा है, और जो भी आपने बताया. आज हम पूछ रहे हैं तेज से शुरू होने वाले अल्फाज. और आफ्ताब साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया. नवाजिश, आपने बताया तेज से टाल मटोल, जी हाँ, बहुत अच्छा लफ्ज़ है. तस्वे आपने बताया, आपने बताया टिकटिकी, जो कि समीरा साहिबा ने भी लफ्ज़ बताया था, और आपने बताया टांकना, किसी चीज़ को दीवार पे टांकना. तो ये आपने आफ्ताब साहब अल्फाज बताए, बहुत शुक्रिया. टाल मटोल, तस्वे, टिक टिकी, बांधना और टांकना. और समीरा साहिबा ने बताए थे कौन से अल्फाज, टिक टिकी, टाली, जो टाली का दरख्त होता है, टेंटवा दबाना जिसे कहते हैं ना, और ठान लेना, टपाल, चाय का नाम है टाए, टाकरा, टॉफी, टुकर टुकर देखना, टिच बटन, ये आपने अल्फाज बताए समीरा साहिबा, तो बहुत शुक्रिया. और जो जरका साहिबा हैं, जरका साहिबा ने कौन से अल्फाज बताए, लिखे तो थे हमने, चलिए अभी ज़रा ढूंढते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि कहाँ पे लिखे थे और क्या अल्फाज उन्होंने बताए थे. बहरहाल इकबाल साहब, आप दोबारा तशरीफ लाइएगा, बताइएगा ते से शुरू होने वाले अल्फाज. ते से नहीं, हम जो पूछ रहे हैं ना, नॉट ते, ते. अलावा इकबाल जो है, वो तीसरा हिस्सा जो है, जो उन्होंने अपने बेटे जावेद इकबाल को जो पैगाम दिया, उसका तीसरा हिस्सा क्या है कि मोमिन पे गिरा है ये शब रोज, मोमिन पे गिरा है ये शब रोज, दीनो दौलत कमार बाजी, नापैद है बंदाए अमल मस्त, बाकी है फकत नफस तराजी, हिम्मत हो अगर तो ढूंढ वो फुक्र, जिस फुक्र की असल है हिजाजी, उस फुक्र से आदमी में पैदा अल्लाह की शाने बेनियाजी, गुनशक को हमाम के लिए मौत है उसका मकाम शाहबाजी, रोशन उससे खिरत की आंखें बेसुरमाए बू अली और राजी, हासिल उसका शिकवाए महमूद फितरत में अगर न हो अय्यासी, तेरी दुनिया का ये सराफील रखता नहीं जौके नै नवाजी, है इसके निगाहे आलम आशूब दर पर्दा तमाम कारसाजी, ये फुकरे गयूर जिसने पाया बेतेगो सना है मर्द गाजी, मोमिन की इसी में है अमीरी अल्लाह से मांग ये फकीरी. बहुत बड़ा सामीने कराम इसमें पैगाम है जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमें देते हैं. और आप इसी शेर को देख लीजिए कि मोमिन की इसी में है अमीरी अल्लाह से मांग ये फकीरी, कि जो इंसान खुददार होता है, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगता है, वो फ़ुक्र में तो शायद हो सकता है, लेकिन उसका ये फ़ुक्र जो है वो शहनशाहों की, बादशाहों की दौलत से भी कहीं ज़्यादा कीमती होता है. और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की नज़र में वो बहुत आला मकाम रखता है, ये उनकी खुदी का फ़लसफ़ा है और ये उसका हिसाब किताब है. चलिए अब ये एक और बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल है, पुरानी, ये भी किशोर कुमार ही की आवाज़ में है, तो लीजिए इसको सुनिएगा.

जी समीन खाना में एक और खूबसूरत सा सदाबहार गीत आपने सुना, और जैसा कि हमने कहा था कि आज के प्रोग्राम में हम आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत पुराने जो गीत हैं ना वही प्रोग्राम में पेश करेंगे। सदाबहार जो गीत हैं जिन्हें गोल्डन इरा के गीत कहा जाता है, और यकीनन आप इन तमाम गीतों से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। हमें भी खुशी है, अच्छी बात है कि आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे ऑनलाइन ये नशियात पहुंचती हैं पूरी दुनिया में www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए, और साथ ही साथ जो हमारा मोबाइल ऐप है स्मार्ट मोबाइल ऐप उसके जरिए आप हमारी नशियात से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप बस डाउनलोड कीजिए और नेट मौजूद हो, और जो काम आप कर रहे हैं किचन में काम कर रहे हैं आप खाना बना रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप किसी को पिक एंड ड्रॉप करना है उस के दौरान, इसके अलावा अगर आप आयरनिंग कर रहे हैं कपड़े इस्त्री हो रहे हैं तब भी, डस्टिंग कर रही हैं तब भी आप जो है रेडियो सुन सकती हैं, बड़ी आसानी की बात है। अलामा मोहम्मद इकबाल ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं उनके हवाले से जो कलाम लिखा वो सुनने के लायक है। कहते हैं, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हवस से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, हुई इसी से तेरे गम कदे की आबादी, तेरी गुलामी के सदके हजार आजादी, वो आस्ताना छुटा तुझसे एक दम के लिए किसी के शौक में, तूने मजे सितम के लिए, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, नजर थी सूरत सुलमा अदा शनास तेरी, शराब दीद से बढ़ती थी और प्यास तेरी, तुझे नजारे का मसले कलीम सौदा था, अवैस ताकते दीदार को तरसता था, मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया, तेरे लिए तो ये सहरा ही तूर था गोया, मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया, तेरे लिए तो ये सहरा ही तूर था गोया, तेरी नजर को रही दीद में भी हसरत दीद, तेरी नजर को रही दीद में भी हसरत दीद, खुनक देके तपे दो दमे नया साईद, गिरी वो बर्क तेरी जाने ना शकेबा पर, गिरी वो बर्क तेरी जाने ना शकेबा पर, के खंदजन तेरी जुल्मत थी दस्ते मूसा पर, तपिश जशोला गरफ्तंद दो बर दिले तो जदंद, चे बर्क जलवा बखा शाक हासिले तो जदंद, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, अजा अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, खुशा वो वक्त के यसरब मकाम था उसका, खुशा वो दौर के दीदार आम था उसका। ये सामीन कराम खूबसूरत सा कलाम अलामा इकबाल ने लिखा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से, कि ये ग़ुलाम थे उन्हें आज़ाद करवा के लेके आए अल्लाह ताला के जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, और कितने सितम उन्होंने सहे, कितनी तकालीफ उठाई, उनको तपती रेत पर लिटाया जाता था, खाल जल जाती थी, उसके बावजूद उन्होंने हमेशा नारे हक बुलंद किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी उनके दिल में गहरी थी कि उन्होंने हर चीज़ का वादा कर ली सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, और अजान ऐसी दिया करते थे कि आज तक तारीख में लिखा हुआ है, लोग याद करते हैं कि वैसी अजान उसके बाद कभी किसी ने शायद नहीं दी। जी तो अब हम चलते हैं अगले प्रोग्राम के गीत की जाने, और ये जो गीत है बहुत ही खूबसूरत सा गीत, बड़ा पुराना सा गीत है, फिल्म पाकीज़ा से लिया गया है, लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज़ यकीनन आप पसंद करेंगे, और उसके बाद समीरा साहिबा एक बहुत खूबसूरत सा गीत होगा आपके लिए कमर्शियल ब्रेक के बाद।

इसलिए हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। उससे पहले अलामा इकबाल क्या लिखते हैं औरत के हवाले से कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं, शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकूम, मकालाते फलातून न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। और फिर आगे औरत की हिफाजत के हवाले से क्या कहते हैं कि एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, क्या समझेगा वो जिसकी रगों में है लहू सर्द, न पर्दा न तालीम नई होके पुरानी, नुस्वानियत जन का निगे बाह है फकत मर्द, जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न पाया उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। और इससे आपके जहन में क्या आया होगा, आजादी निस्वा आया होगा, तो उसके हवाले से क्या लिखते हैं, इस बहस का कुछ फैसला मैं कर नहीं सकता, गर खूब समझता हूं कि ये जहर है वो कंद, क्या फायदा कुछ कह के बनू और भी मातूब, पहले ही खफा मुझसे हैं तहजीब के फर्जंद, इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, मजबूर है माजूर है मर्दान खिरदमंद, क्या चीज है आरायश व कीमत में ज्यादा आजादी निस्वा के जमर्रत का ग्लू बंद। और उसकी तालीम के हवाले से इकबाल ने क्या लिखा सामईन कराम, आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात है ये, कि क्या लिखते हैं इकबाल, तहजीब फरंगी है अगर मर्ग अमूवत, तहजीब फरंगी है अगर मर्ग अमूमत है हजरत इंसान के लिए इसका समर मौत, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत, बेगाना रहे दीन से अगर मदरसा जन है इश्क, मस्ती के लिए इल्म हुनर मौत। ये इकबाल ने औरत के हवाले से सामईन कराम लिखा। और एक और अगली चीज औरत के हवाले से क्या लिखी कि जो जौहर मर्द आया होता है बेमन्नत गैर, गैर के हाथों में जौहर औरत की नमूद, राज है इसके तपे गम का यही नुक्ता शौक, आतशी लज्जत तखलीक से है इसका वजूद, खुलते जाते हैं इसी आग से असरार हयात, गर्म इसी आग से है मार का ए बूदो नबूद, मैं भी मजलूमी निस्वा से हूँ गमनाक बहुत, नहीं मुमकिन मगर इस उकदाए मुश्किल की कशूद। ये समझने का नाम आज से तकरीबन 150 साल पहले, जब औरत इतनी आज़ाद नहीं थी, उसको आज़ादी इतनी हासिल नहीं थी, तो ये उस वक्त के ज़माने की बातें हैं इकबाल ने लिखा था। लेकिन यकीन कीजिए अगर आज के हालात को मद्देनज़र सामने रखा जाए तो हम ये समझते हैं कि इकबाल ने बिल्कुल सही लिखा था। आज़ादी निस्वा ठीक है होनी चाहिए, औरत भी बहैसियत इंसान, औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। और दीन भी यही बताता है, हमारे समझने में कुछ गलती हो जाती है, अमूमन कहा जाता है जी औरत नाकसुल अकल है, औरत में इतनी अकल नहीं होती, औरत जो है चीज़ों को उस तरह से समझती नहीं, वो तो जज्बाती सा एक वजूद है जो बस बच्चों की मोहब्बत में हर चीज़ दाव पे लगा देती है, और अगर इश्क हो जाए किसी से मर्द से तो वो फिर कुछ भी नहीं देखती। ये सब चीज़ें ठीक है किसी जगह पर, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं इस सोच को, लेकिन हर औरत तो ऐसी नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा अमूमन औरतें ऐसी नहीं होती। औरतें तो वफा की देवियाँ होती हैं, औरतें तो सब्र और शुक्र जो है उसका पैकर होती हैं, औरत घर बनाने में उसका जो किरदार है ना वो एक सतून की हैसियत रखता है। बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए औरत को कि वो अपनी सोच का इजहार कर सके, जिस तरह मर्द इजहार करता है बिल्कुल उसको आज़ादी होनी चाहिए कि अगर वो पढ़ना लिखना चाहती है जितना मर्द पढ़ता है, उतनी ही आज़ादी औरत को दीन ने भी दे रखी है, कहीं कदगन नहीं लगाई। लेकिन हाउएवर ये सोचना चाहिए कि एक हद है बारीक सी, अब उस हद को अगर औरत क्रॉस कर लेती है, अगर उसे वो आगे बढ़ के जब वो बीवी बनती है किसी मर्द की, तो फिर वो औरत जो है ना वो महकूम एक लिहाज से बन जाती है, मर्द को उसका हाकिम बनाया गया, मर्द को रिजाल और कवाम के लफ्ज से पुकारा गया कुरान में, तो वहां औरत को अपने शौहर का हुक्म जो जायज हुक्म है वो मानना जरूरी होता है, ये औरत की फिर जिम्मेदारी बन जाती है।
وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عورت ایک شخص کی ذمہ داری ہے، اس سے پکارا گیا قرآن میں، تو وہاں عورت کو اپنے شوہر کا حکم جو جائز حکم ہے وہ ماننا ضروری ہوتا ہے، یہ عورت کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عورت

ताल्लुक है, जो रिश्ता है ना, उसको, उस डोर को टूटना नहीं चाहिए किसी भी सूरत। ये जहन में रखिए बात को। औरत की आज़ादी है लेकिन एक हद तक है। अब अगर औरत भी निकल पड़े कि जी वो रातों को भी काम कर रही है, दिन में भी मसरूफ है, तो घर किसने संभालना है, बच्चे कौन पालेगा? माँ की गोद का जिक्र हमेशा होता है, बाप की गोद का जिक्र नहीं होता। बाप की शफकत होती है, उसकी मोहब्बत होती है, बाप भी तरबियत में शामिल होता है माँ के, और उसको होना चाहिए भी क्योंकि वो बाप है। माँ और बाप दोनों का अपना अपना किरदार होता है, लेकिन एक मर्द जो है, एक औरत जो है, जब वो माँ बनती है ना, तो फिर उसकी ज़िंदगी तो अपनी थोड़ी बहुत काफ़ी हद तक पीछे चली जाती है। तालीम हासिल करे, लेकिन औरत की हिफाजत मर्द के ऊपर फ़र्ज़ है, वो कमाम है, वो रिजाल है। तो मर्द को भी चाहिए कि मर्द बन के दिखाए। मर्द सिर्फ ये नहीं होता कि वो अपनी जिस्मानी ताकत के हिसाब से कहेगी जी हाँ जी हम आपसे ताकतवर हैं और हमारा रोब चलेगा और जोर चलेगा और ये होगा और वो होगा, हम महज बस आप पे जुल्म ज्यादती करेंगे और आप बर्दाश्त करेंगी। ऐसी बात नहीं है। जुल्म तो बर्दाश्त करना किसी के लिए भी अल्लाह ने रवा नहीं रखा, खा वो औरत है, खा वो मर्द है, खा वो बच्चा है, खा वो गुलाम है, खा वो मालिक है, हाकिम है, कोई भी है। जुल्म को तो किसी सूरत पसंद नहीं किया जाता। लेकिन आज़ादी निस्वा का मतलब, औरत की हिफाजत का मतलब, औरत और तालीम का मतलब इकबाल ने कहीं नहीं लिया कि शुतर बेमहार बन के औरत जो है ना घूमना फिरना शुरू हो जाए और कोई उसको पूछने वाला ना हो, कोई उसकी हदूदो कयूद ना हो, क्योंकि मुआशरा जो है ना बड़ा जालिम है, वो और निगाहें रखता है, घर वालों की तरह की निगाह नहीं होती। हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, हम समझते हैं कि इस मुल्क में आ गए, यहाँ पे आके जहाँ हम रह रहे हैं, यकीन कीजिए कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। यहाँ पे उस तरह से यानी कम है रेशो, ये हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत कम रेशो है। औरत और मर्द को यहाँ तो बराबर समझा जाता है ना, बिल्कुल, कि जितनी मर्द की जो है इज्जत है उतनी औरत की भी है, जितनी मर्द तालीम हासिल कर सकता है औरत भी हासिल कर सकती है, ये सब कुछ है। लेकिन फिर भी जो एक दीन इस्लाम जो है उसकी अगर बात करें, तो उसने औरत की हिफाजत का जिम्मा मर्द को दे दिया, उसको एक दर्जा ऊपर दे दिया जब वो शौहर और बीवी बनते हैं। बहसियत इंसान याद रखिएगा बराबर हैं, वो हर लिहाज से बराबर हैं। यहां देख लीजिए ख्वातीन कौन सा काम है जो मर्द करते हैं और ख्वातीन नहीं करती हैं, ट्रक क्या, जहाज क्या, ट्रॉले क्या, वो सब कुछ चलाती हैं, हैवी मशीनरी है उसको वो इस्तेमाल करती हैं। तो बहरहाल थोड़ा सा सोच का जाविया बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा दिल दिमाग की खिड़कियाँ खोलने की ज़रूरत है। लीजिए अब ये बहुत खूबसूरत सा गीत समीरा साहिबा आपके लिए पेश करते हैं।

0: on Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी सामिने कराम, बहुत खूबसूरत सा आपने पुराना सा गीत सुना समीरा साहिबा, आपके नाम हमने किया खसूसी तौर पर और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जी जनाब नवील साहब, आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने कहा कि प्रोग्राम आपने सुना तो आपको अच्छा लगा और आपने चाहा कि सराहा जाए, तो तहे दिल से आपके मशकूर और ममनून है इस इज्जत अफसाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा प्रोग्राम होता है मंडे एंड ट्यूसडे, यानी सोमवार और मंगल के रोज 10 बजे से लेके तकरीबन 1:15 तक, जो यूके का टाइम है इंग्लैंड का, उसके हिसाब से उज़्मा अशफाक हमारा नाम है, प्रोग्राम हम करते हैं मंडे एंड ट्यूसडे, लेकिन इत्तफाकन कल भी आप सुन पाएंगे हमें इंशाल्लाह ताला हुल अजीज। तो नवीद साहब, आपने अल्फाज भी बता दिए, टहलना, टटोलना, टोकरी, और आपने कहा कुछ पंजाबी से भी अल्फाज बनते हैं, तो बस वही जैसा कि हमने आपसे अर्ज किया कि पंजाबी के अल्फाज हम शामिल नहीं करते, कोशिश यही है कि जिस जबान की हरूफ तहजी हैं उन्हीं उसी जबान के अल्फाज को शामिल प्रोग्राम किया जाए। बहरहाल आप स्वीडन से तशरीफ लाए पहली मर्तबा, आइंदा भी कोशिश कीजिएगा प्रोग्राम को सुनने की, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात को, और शामिल हो जाए तो हम आपके मजीद मशकूर और ममनून होंगे। तो लीजिए ये आने वाला खूबसूरत सा गीत हम आपके नाम ही करते हैं, हमने ये क्यों कर रखा है पहले से, सुनिएगा।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड
6: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान

0: From only £99, खूबसूरत कार्पेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ. बॉबीज कार्पेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN. बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कार्पेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है.
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए. आज ही तशरीफ लाइए. ओपन 7 डेज. बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA. फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन.
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए.
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं.
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है.
0: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY.
3: टेलीफोन 01274731555. मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK.
4: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है. महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स. जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स. ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस. अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान. महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स. महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453. महमूद रिजवी.
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो।
1: मैंने तुम्हारे बगैर इतनी खामोशी महसूस की है कि मैं बोलना भूल गया।
0: मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि देखना, हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे तुम।

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर। यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर ले और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे।

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आमद के साथ ही हमारे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो हो चुका है। लेकिन हम उनका तारुफ कराते हैं, ये रिवायत बन गई है गजल उसने छेड़ी की एक हसीन गीत के तोहफे के बाद, जिसे हम किया करते हैं अपने उन चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले लिसनर्स और व्यूअर्स के नाम के, जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत व तौकीर में इजाफा करती है। इस दुआ के साथ कि जहां जहां तक हवा के दोष पर मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरे तमाम सुनने और देखने वाले हिज्ज़ो अमान में हों, अल्लाह ताला की सेहत से हों और खुश हों, और आज का ये दिन उनके लिए खुशियों का दिन बने। अब हम बिला किसी ताखीर के आगाज करेंगे अपने उस हसीन तोहफे का, जिसे हम आपकी मोहब्बत और चाहतों के नाम किया करते हैं आगाज प्रोग्राम में। 3 बजे के बाद एक शायर, एक गीत, 2 फनकार लेकर हाजिर रहूंगा। आज का नगमा मुंतखब किया है कराची पाकिस्तान से हमारी हसीन जोड़ी और बाकायदा से तशरीफ लाने वाले मेहमान जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा ने। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा ताकि गीत के दौरान भी आते रहते हैं लोग। तो पहला गीत आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम। आपकी आमद का मैं मुंतजर रहता हूं, आपकी आमद ही तो चार चांद लगाती है गजल उसने छेड़ी को। तो ये रहा आपका तोहफा, कबूल कीजिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। हमारी नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में से इस वक्त ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। जो मेहमान तशरीफ ला चुके हैं उसमें जनाब रियासत साहब हरिसफील्ड की हसीन फजाओं से, वकार मियां तशरीफ लाए हैं वेकफील्ड से, रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से, सुमैरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से, डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से, भगत सिंह साहब लाए हैं तशरीफ लीड से, और परदेसी मजी साहब तशरीफ लाए हैं गुजरात पाकिस्तान से। खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान से परदेसी मजी साहब का पैगाम यह है कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सबको मेरा सलाम, उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। शकील साहब, रिजवान साहब, चौधरी साहब, चौधरी रुखसार अहमद साहब मार्केट से गायब हैं आजकल, लगता है पुलिस में रिपोर्ट कराना ही पड़ेगी। सो चौधरी रुखसार अहमद साहब को और नवीद साहब को और खालिद साहब को भी मेरा सलाम और भी पैगाम है साहब, और मेरा सलाम तमाम सुनने वालों को भी, बहुत बहुत सलाम कबूल हो। जनाब परदेसी मजी साहब आपका सलाम, हम साहब को मेरा सलाम और पैगाम साहब, और मेरा सलाम तमाम सुनने वालों को भी, बहुत बहुत सलाम कबूल हो। जनाब

तो सलाम तो भेजा है इन अहबाब ने भी, जिनके असमाए ग्रामी मैंने लिए हैं, और कहते हैं कि हमारा मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाजरीन को, और ढेर दुआएं और प्यार भी। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, आप तमाम का सलाम पहुंचा दिया है, और अब हम चल रहे हैं अपने लीच, जहां भगत सिंह साहब ने खूबसूरत गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने अहले खाना के हमरा मैनचेस्टर और मैनचेस्टर से बर्मिंघम तक का सफ़र है तय करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि हम खूबसूरत दिन का आगाज़ हमारे हो और हमारी पसंद हमारी साथ हो। बाकी प्रोग्राम मैं आपका गाड़ी में सुनता हुआ जाऊंगा, ठीक है? आपकी मर्जी है, हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं, और आपका तोहफा हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी। भगत सिंह साहब, आपकी आमद का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया।

0: at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

दोस्तों, अब हम चल रहे हैं सुमेरा बिटिया की कजन्स के पास, जो इस वक्त हमें मिडिल्सब्रा में सुन रही हैं। और सुमेरा बिटिया हमारे हमराह यहाँ बेडफोर्ड 3 में मौजूद है और कहती हैं कि आज छोलिया नहीं कुछ बताया था, मैं भूल गया। बहरहाल जो भी पका रही हो, तुम्हारा एक ही तो शौक़ है, पकाना, खाना और खिलाना। अल्लाह इस शौक को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बेटा, मेरे जहन से निकल गया आपने क्या बताया था, कुछ था जिक्र। खैर छोड़ो, आप सुनाइए कैसी हैं। आपकी प्यारी प्यारी कजन्स का तोहफा लेकर हाजिर हैं और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे खारियाँ गुजरात पाकिस्तान, जहाँ से बहुत खूबसूरत गीत पसंद किया है परदेसी मजीद साहब ने, उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे। उसके बाद वकार मियाँ आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे। मैं अभी तलाश करता हूँ कोई खूबसूरत सा गीत। आपने मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाई है, कोई बात नहीं, ज़रूर करेंगे तलाश। कहते हैं कि आज मैं सुबह से ज़रा हल्का हल्का सर में दर्द है भाई, ये मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। मुझे नहीं देख रहे आप, इतने बहुत से टिश्यूज मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? ये हमारे यहाँ कोल्ड, आपको पता है, यही हाल मेरा था। मेरे खैर पूरे हफ्ते सर में दर्द भी रहा और रात को बुखार हो जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फिर अल्लाह ताला फजल करम कर देता था। सिर्फ ये था कि नाक के बहने का सिलसिला जारी था, बसूरत दीगर बुखार वगैरह नहीं हो रहा था। तो ख्याल रखिए और पैरासीटामॉल चार चार घंटे बाद लेते रहिए। वक़ार, आज आप अपने अहले खाना के साथ मौजूद हैं तो मुझे भी तसल्ली है कि मैं आपका गीत आराम के साथ बजा सकता हूँ। अभी तो हम चल रहे हैं ये अपने मिडिल्सब्रा। प्यारी प्यारी कजन्स, लव यू ऑल, हमारी ढेरों दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और सुमेरा और तुम्हारी ये अंडरस्टैंडिंग अल्लाह ताला यूं ही कायम और दायम रखे। जीती रहो सब में ये मेरे मोहब्बत, हमेशा यूं ही कायम और दायम रहे। लव यू, लव यू, लव यू।

और दोस्तों सब पर सबकत ले जाने वाले पेज पर पहली मरतबा सब पर सबकत ली है हमेशा की तरह जनाब परदेसी मजीद साहब ने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज व अमान में रखे, नजरे बद से बचाए, आपकी मोहब्बत आपकी चाहत सर आंखों पर, और आपका तोहफा आपकी नजर कर रहा हूँ। निके होंदिया दिया गल्लां याद आ रही हैं। हां जी हेलो जी तुहाडा तोहफा आदे रे कबूल करो। निके होंदिया दी यादां बड़ी सोहणी होंदियां।

और आइए दोस्तों अब चलते हैं हम आपको लेकर वेकफील्ड, जहां हमारे वकार मियां आज इनकी तबीयत नासाज है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। कह रहे हैं हल्का हल्का सा बुखार भी महसूस हो रहा है और सर में भी दर्द है। मियां कोई फिक्र की बात नहीं है, ये मौसम का असर है, मैं इस मरहले से गुजर चुका हूँ, इंशाल्लाह पैरासीटामोल लेते रहो चार चार घंटे बाद। अगर बुखार है तो दो, और अगर सर में दर्द है फ़कत तो सिर्फ एक। ये डॉक्टर रिफत अब्बास आपको बता रहे हैं। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सबको मेरी जानिब से ढेरों दुआएं और प्यार और मोहब्बत भरा सलाम।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। एक कसीर तादाद हमारे श्रोते मुजाहिदों और नादीदा लिसनर्स की हमारे हमराह मौजूद है, जिनके लिए हम एक खसूसी गीत तोहफतन पेश करेंगे कि आप ऑनलाइन सुनकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत तौकीर बढ़ाते हैं। आज हम पेश कर रहे हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट, अभी हम कल भी इसे जारी रखेंगे और इस हफ्ते समझ लीजिए कि ये आखिरी लम्हात हैं इसके, हम नया कोई सेगमेंट शुरू करेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त हम जो गीत एक शायर एक गीत और दो फनकार में शामिल कर रहे हैं, इसे मंतखब किया है हमारे बड़ी बाकायदगी से कराची पाकिस्तान से तशरीफ लाने वाले हसीन जोड़ी जनाब रिजवान साहब और उनकी शरीकयात अमरीन जहरा ने। फिल्म का नाम है कभी कभी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत इंतखाब है। अल्लाह ताला रिजवान साहब और अमरीन आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और नज़र-ए-बद से बचाए। दोस्तों कभी कभी 1976 की एक फिल्म थी, इसमें बहुत से नामवर सितारे थे लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा जी इसके मेन स्टार थे। मैं इस फिल्म से वाबस्ता एक छोटी सी कहानी भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। 1976 में अभी वीडियो आम नहीं हुआ था, अब तो ख्वाब की तरह है, और जो नई फिल्में होती थी, हमारे यहाँ कराची में एक जगह है ईदगाह, तो ईदगाह में हमारे दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, हमने इसकी बड़ी तारीफ सुनी थी कभी कभी की और अदब से क्योंकि लगाव था, तो हमने सोचा कि दोस्तों ने कहा कि अगर तुम चलो तो हम एक जगह है जहाँ तुम्हें ये फिल्म दिखा सकते हैं। मैं समझा कोई हॉल वगैरह होगा या कहीं, बड़ी बाइंडिंग थी, बहुत पाबंदियाँ थी वीडियो पर और कुजा के कोई नई फिल्म हो। खैर मुझे वो लेकर, सबके पास मोटरसाइकिलें थी, हम लोग ईदगाह पहुंचे तो हमें एक चाय के होटल में बिठा दिया गया। वहाँ मेमन ब्रादरी, आपको पता है कि मनी मेकर हैं, गॉड गिफ्टेड, उनके पास अल्लाह ताला ने ये जहनी सलाहियत दी है कि वो हर तरह से पैसा कमाने का गुर जानते हैं। सो हम ईदगाह पहुंचे और हमें सबको एक चाय के होटल में बिठा दिया गया और कहा गया हम आपको बताएंगे कब आपको चलना है और फिल्म देखनी है। खैर हम लोग चाय वगैरह पीते रहे, इतने में वहीं पर ईदगाह में ही एक रेस्टोरेंट था, पता नहीं अब है या नहीं है, देखिए नाम मैं याद करता हूँ, साबरी, उसकी नहारी बहुत मशहूर थी। तो हम लोग जब गए थे वहाँ फिल्म देखने तो उससे पहले हमने साबरी में, बहुत शानदार नहारी बनाते हैं, क्या बात है, उसका नेमल बदल नहीं, अब उसके भतीजे और पोते बनाते हैं। मैं गया था पाकिस्तान अभी, जाहिद है जैसे वो, उनका भतीजा या भांजा है, बहुत शानदार नहारी। तो खूब खा पी के आए थे, जाके होटल में सब बैठ गए तो वो एक दुबला पतला सा मेमन बच्चा था, वो आया, उसने कहा कि हम आपको बताएंगे कि कहाँ चलना है फिल्म देखने और जब हम इशारा करेंगे तो आपको आ जाना है। खैर हम इंतज़ार करते हैं, फिर वो आया और उसने कहा कि आइए चलें फिल्म देखिएगा। तो जनाब हम गए तो वहाँ देखा कि कपड़े के पर्दे लगे हुए हैं, उसने पर्दे हटाए और कहने लगा वहाँ दरी पड़ी हुई कि सब यहां बैठ जाएं। और पता नहीं उस जमाने में 20-20 या 30-30 रुपए लिए थे। हमने कहा कि भाई यहां देखेंगे फिल्म, तो देखा सामने एक बड़ा सा टेलीविजन, रशियन टीवी था कोई बड़ा, उस जमाने में रशियन टीवी, मैं भी जब सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए लाया था वो टीवी, बहुत इस्तेमाल किया हमने, उसकी बड़ी सी अलमारी भी होती थी और टांगे भी होती थी पर, और कर्टन सब वो उसकी स्क्रीन होती थी उसे बंद कर दो और उसे उठा के रखा जाता था मुख्तलिफ जगह। तो खैर वो टीवी था और उसके ऊपर एक छोटा सा डब्बा रखा था, हमने तो वीडियो पहली मरतबा वहां देखा क्योंकि हमें इतना शौक तो नहीं था, लेकिन फिल्म कभी कभी की वजह से हम गए। खैर फिल्म का आगाज हुआ, अभी 15 मिनट हुए होंगे और बहुत मजे की, बहुत उम्दा फिल्म है, मैंने कई बार देखी है। सो फिर फिल्म 15 मिनट हुए होंगे, वो आया वही लड़का और उसने कहा जल्दी जल्दी जाओ सब होटल वापस चले जाओ, पुलिस आ गई पुलिस आ गई पुलिस आ गई। वापस जाके होटल में बैठ गई, कोई आधा घंटे बाद फिर दोबारा उसने बुलाया। तो इस तरह कोई 3-4 बार कभी कभी देखने के दौरान पुलिस का छापा पड़ा और वो उनको पहले से इत्तला होती थी, कहते हैं ये फॉर्मेलिटी के लिए आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, पकड़ेंगे नहीं आपको, ये फॉर्मे हम तो इनको वो देते हैं भत्ता, मगर ये फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं कि पुलिस की निगाह चारों तरफ है। मैंने कहा ये तो बड़े जाफिशा तौर पर काम करने वाले पुलिस वाले हैं कि आते हैं और सिर्फ भगा के सबको, हम लोगों को पूरी नहारी वहारी हजम हो गई पूरी फिल्म के दौरान 4 बार। वो आए और जल्दी से हम लोगों को भगा के फिर वही होटल में बिठा दे और पर्दे फिर डाल दे। इस तरह हमने कभी कभी फिल्म देखी थी, लेकिन आज तक मुझे याद है कि मुझे ये फिल्म इस कदर भाई, मैंने कभी आज तक 3 घंटे बैठकर फिल्म नहीं देखी, हालांकि रेडियो से वाबस्ता हूँ गीत बजाता हूँ। फिर दूसरी बात जो इत्तेफाक हुआ था वो DDLJ का प्रेस शो था, उसमें हमें लेके गए तो शाहरुख से किसी ने शर्त, हमारी जो अब BBC में है वो लड़की, उसने शर्त लगा ली कि रिफत अब्बास आपको इंटरव्यू तो करेंगे लेकिन जब आप कहेंगे क्या वहाँ चलिए फिल्म के लिए हॉल पे तो वो गोल हो जाएंगे, तो मैं आपको 100 पाउंड दूंगी अगर आप इन्हें फिल्म दिखा दें। तो वो 100 पाउंड दे के हम गए, फिर शाहरुख ने ऐसा हाथ पकड़ा जानी न छोड़े, कह के नहीं वो आप जा नहीं सकते कहीं बैठे आप। मैंने कहा यार मैं अभी आता हूँ बाहर होके आता हूँ जरा वहाँ जाना है, कि नहीं कहीं नहीं जाएंगे। तो मैंने DDLJ दूसरी फिल्म थी जिसे 3 घंटे बैठकर देखा, और कभी कभी वो फिल्म थी जिसे दौड़ दौड़ के मैंने देखा। तो आज जो हमारे रिजवान रिजवी और अमरीन ने जो तोहफा पसंद किया है वो उसी फिल्म से है जिसे मैंने दौड़ दौड़ के भाग भाग के और डर डर के, क्योंकि हमें तो ये डर था कि पुलिस ना पकड़ ले कहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बाद में बात क्लियर कर दी थी कि ये फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, इनका तो बाकायदा मियाँ भत्ता जाता है। और आज भी हम उस फिल्म का एक गीत कभी कभी जिसे साहिर लुधियानवी ने तहरीर किया था और मौसीकी से संवारा था अजीम मौसीकार खयाम ने, 1976 में ये फिल्म आई थी और फनकार पहला फनकार लेकर हाजिर हूँ और ये फनकार हैं मुकेश। तो आइए एक शायर एक गीत दो फनकार, आज के शायर हैं साहिर लुधियानवी, मौसीकार हैं खयाम, फिल्म का नाम है कभी कभी, और आप तक ये खूबसूरत नज्म पहुंचाने की सआदत हासिल कर रहे हैं अनोखी आवाज सहरंगेज आवाज के मालिक मुकेश।
1: मेरे दिल में ख्याल आता है,
0: ये अमिताभ बच्चन खुद,
1: जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

दोस्तों, जो गीत आज आप सुन रहे हैं, एक शायर, एक गीत, दो फनकार, इसे मुंतखब किया है, जैसा कि मैंने आगाज प्रोग्राम में ही बताया था, कराची पाकिस्तान से हमारी जो हसीन जोड़ी तशरीफ लाती है, जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा ने। अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे। मैंने आपको एक दिलचस्प किस्सा तो इस गीत फिल्म के हवाले से बता दिया, जिसे हमारे सुनने वालों ने, मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि बहुत पसंद किया है। ईदगाह का जिक्र कह रहे हैं आपने करके, और साबरी निहारी होटल का जिक्र करके, बहुत सी पुरानी यादें वाबस्ता हैं सभी की, जिन लोगों का ताल्लुक कराची से है, और ख़ास तौर पर उन्हें यह हिस्सा बहुत पसंद आया कि जब आपने फिल्म देखी ईदगाह में, तो वीडियो पर 4 मरतबा आपको भागना पड़ा कि पुलिस आ गई, भागो भागो भागो भागो भागो, ये हमने 4 मरतबा सुना। लेकिन फिल्म वाकई इस काबिल थी कि उसके लिए हमें वो तकलीफ आज भी महसूस नहीं होती। एक और खूबसूरत बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बातों बातों में याद आ जाती है तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मुझे लंदन में एक बड़ा मारूफ रेडियो स्टेशन है जिससे मैं तकरीबन 12 साल वाबस्ता रहा, उसमें अमिताभ बच्चन जी को इंटरव्यू करने का शर्फ हासिल हुआ। यूं तो मैंने तमाम ही बड़े जितने फनकार हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, सबको इंटरव्यू किया है। अमिताभ ने जो एक बात बताई वो मैं बहुत हैरान हुआ सुन के, और मैं आप सब से शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने जब हमारे इंटरव्यू के दौरान मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा था और लाखों का मजमा बाहर रेडियो स्टेशन के जमा था, बेइंतहा मकबूल थे, वो एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम याद नहीं है, जिसका गाना था जुम्मा चुम्मा ले ले, वो वाली, तो उस जमाने की बात है ये। तो इंटरव्यू कर रहा था और इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे सवाल किया कि आपको अल्लाह ताला ने इस कदर खूबसूरत आवाज़ से ऊपर वाले ने नवाजा है, तो आपने रेडियो में क्यों नहीं ट्राई किया। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई, उन्होंने बताया कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं 150 या 200 की शायद बता रहे थे कि कहीं मैं नौकरी कर रहा था, या 300 की। तो मैंने कहा कि कुछ एडिशनल भी होना चाहिए, हालांकि बहुत आला ख़ानदान के हैं ये, इनके वालिद बड़े नामी गिरामी, लेकिन बहुत ही खुददार किस्म की शख्सियत थे, सरवन राय बच्चन कुछ उनका नाम था, बहुत अच्छे शेर कहते थे। मैंने बहुत कोशिश की कि उनका कलाम मुझे मिल जाए, हिंदी के अशार हैं उनके, नामी गिरामी, लेकिन बहुत ही खुददार किस्म की शख्सियत थे, सरवन राय बच्चन कुछ उनका नाम था, बहुत अच्छे शेर कहते थे।

अपनी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैंने कहा जी। कहने लगे मुझे बड़ा शौक था, रेडियो हम शुरू से सुनते थे कॉलेज के जमाने में भी, और हमें रेडियो पर बोलने वाले और उनकी आवाज का सहर और लफ्जों से जो ताना बाना बुनते थे और हमें कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया करते थे, हमें भी ये शौक हुआ कि हम रेडियो जाएं। तो वो ऑल इंडिया रेडियो गए और उन्होंने ऑडिशन दिया और उन्हें बहुत यकीन कामिल था कि मुझे कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब आके ऑडिशन की खबर मिली तो इनके पैरों से जमीन निकल गई। कह रहे हैं मुझे उन्होंने कहा कि आपकी आवाज इस काबिल नहीं है कि आप रेडियो पर प्रोग्राम कर सके, और मुझे ऑडिशन में फेल कर दिया। तो मैंने कहा आज आप जाके उन्हें बताइए कि आपके आवाज के करोड़ों दीवाने हैं, आपको ऊपर वाले ने इस कदर हसीन आवाज अता की है और यह आवाज खुदा की देन होती है। लोग बना के बोलते हैं रेडियो पर जाकर बन के, और कोशिश करते हैं कि आवाज को गंभीर बनाया जाए। आवाज तो खुदा की देन है, जैसी आपकी आवाज है उसको उसी नेचुरल अंदाज में ही, जैसे मैं प्रोग्राम करता हूँ आपने अंदाजा लगाया होगा, आपको महसूस होता होगा। ये हमारी तरबियत है रेडियो पाकिस्तान कराची की कि अपनी आवाज की शनाख्त को कायम रखिए। जब वो आवाज लोगों के कानों तक बरसों पहुंचती रहती है तो वो अपना एक मकाम बना लेती है, जैसे पड़ा हुआ पत्थर भी एक जगह भारी हो जाता है। सो मैंने अमिताभ साहब से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मियाँ इसका जवाब यह है कि मुझे इस काबिल नहीं समझा गया था कि मैं रेडियो पर प्रोग्राम कर सकूं, और मुझे ऑडिशन में फेल कर दिया गया था। अब वही रेडियो वाले कहते हैं कि तशरीफ लाइए हम हाजिर हैं, अब मेरे पास वक्त नहीं है, अब मैंने जो राह मुंतखब की है इसमें मैं इस कदर मसरूफ रहता हूँ कि घर भी कम कम जाना होता है मेरा। बहरहाल ये तो बात थी। अब हम एक शायर एक गीत दो फनकार के दूसरे फनकार से मिलेंगे। आज का गीत मुंतखब किया है रिजवान और अम्बरीन ने, और तहरीर किया है इसको मशहूर ज़माना साहिर लुधियानवी ने, और मौसीकी से संवारा है उस्ताद मौसीकार खयाम ने, और आवाज़ का जादू जगा रही हैं सिरों की देवी लता मंगेशकर।

0: Ear catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
5: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
5: आपकी शान
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
5: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
3: 33 Wetley Lane, Bradford,
5: 01274201679। UK।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, Bradford, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
8: दोस्तों, कमर्शियल से पहले आप सुन रहे थे हमारा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। आज के शायर थे साहिर लुधियानवी, मौसीकी से संवारा था खयाम ने, और दो फनकार थे मुकेश, लता मंगेशकर, और तीसरे फनकार भी उसमें शामिल थे और वो थे जनाब अमिताभ बच्चन साहब। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ रिजवान रिजवी और उनकी अहलिया का, बेइंतहा खूबसूरत इंतखाब था। अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे। इससे पहले कि हम कराची, पाकिस्तान आपको लेकर चले और उनकी पसंद का गीत उनके नाम करें इस हसीन जोड़ी के, हम आपकी मुलाकात अपने एक सादा, दिलकश और मासूम सी शख्सियत से कराते हैं। आपको लिए चलते हैं ओल्डम, जहां मौजूद हैं अयूब चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम सलाम रिफत भाई, ठीक हैं?
8: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
9: बस ठीक है भाई, कुछ इन्फेक्शन या हो गया था टीथ को, वो थोड़ा सा परेशानी है। और
8: इन्फेक्शन जो है वो आंख वगैरह में हुआ क्या?
9: जी
8: आंख में
9: नहीं, टीथ में।
8: अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे। उसका इलाज बड़ा अच्छा है, क्या दर्द कर रहा है?
9: नहीं, वो उन्होंने दवाई दी हुई है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
8: वेरी गुड, बस आप अकलमंद आदमी हो यार, आपको बताने की जरूरत नहीं है। खुश आमदीद।
9: आज प्रोग्राम तो नहीं था आने का, लेकिन आपने इतनी अच्छी बातें की, इतनी याद दिलाई, तो मैं सोचा चलो आपसे सलाम दुआ कर लें।
8: आपकी मोहब्बत है।
9: 76 की बात है, ये मैंने फिल्म शादी से पहले देखी थी। उस वक्त शादी के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयारी में था, तो उस वक्त ये जा रहा था पाकिस्तान, तो ये फिल्म देखी थी मैंने, तो बहुत अच्छी लगी थी। पूरे
8: मुझे मुझे अब भी मैं देख लेता हूँ कभी कभी, मुझे वो बहुत पसंद आई है।
9: तो ये मैंने मैनचेस्टर में देखी थी।
8: अच्छा अच्छा।
9: अभी तो कुछ इशार सुनाऊंगा मैं आपको, गाना भी जो है सर लुधियानी का है, वो शायर भी सर लुधियानी के है।
8: अच्छा अच्छा, जरूर जरूर। जो गीत आपने लिखवाया है वो भी साहिर का ही है
9: जी?
8: जो गीत आपने सुनना चाहे वो भी साहिर का लिखा हुआ है
9: जी? जी।
8: अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर बजाएंगे हम, शामिल प्रोग्राम करेंगे, नोट कर लिया मैंने।
9: तुम अपने रंज व गम अपनी परेशानी मुझे दे दो,
8: तुम अपने रंज व गम अपनी परेशानी मुझे दे दो,
9: तुम्हें उनकी कसम ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो।
8: वाह वाह वाह वाह, क्या इंतखाब है, क्या इंतखाब है।
9: ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ उन निगाहों में,
8: ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ उन निगाहों में,
9: बुरा क्या है अगर इस दिल की वीरानी मुझे दे दो।
8: वाह वाह वाह वाह, भाई क्या इंतखाब है, वाह वाह वाह, साहिर का खूबसूरत तरीन कलाम
9: जी। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है,
8: मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है,
9: कुछ दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो।
8: हाय हाय, कुछ दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। वाह वाह वाह वाह,
9: वो दिल जो मैंने मांगा था मगर यारू ने पाया है।
8: आहा,
9: बड़ी शय है अगर इसकी पेशमानी मुझे दे दो,
8: इसकी पेशमानी मुझे दे दो। वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह।
9: तो बस इतनी सी, तो ठीक है जी,
8: बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआ है अयूब कि अल्लाह ताला, हाँ हाँ, सलाम तो पहुँचा ही दिया है आपने, आपकी जबानी हवा के दोष में पहुँचा, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और अपने हिज्जा मान में रखे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और दोस्तों देखिए, ये मोहब्बत है अयूब चौहान साहब की, बावजूद इसके कि दाढ़ में दर्द है उनकी काफी, और वो हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए हैं। इनकी यही मोहब्बत हमें इन्हें सलाम करने पर मजबूर करती है। और अब हम चल रहे हैं कराची पाकिस्तान, जहां हमारे रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा की हसीन जोड़ी मौजूद है, और सुनना चाहते हैं

उससे ये जरा कोल्ड और कफ थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन कोई मैं डरता नहीं हूँ इनसे। इससे बहुत बड़े बड़े बीमारियों से गुजर चुका हूँ, तो ये तो कुछ है ही नहीं। इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर रहूँगा। तो मैं रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा की पसंद पेश कर रहा हूँ। उससे पहले दुआएं तो हम आपको दे ही चुके हैं कि अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और ये मेरा मोहब्बत यूँ ही कायम दायम रखे। हाँ, एक बात और मैं बीच में भूल जाता हूँ फिर भाई, वो ये कि कल एक शायर एक गीत और दो फनकार का नगमा मुंतखब किया है नॉर्थ हॉल्ट लंदन से, जनाब शहरयार साहब और उनके अहल खाना से। सो उनके अहल खाना और शहरयार साहब, आपका जो नगमा आपने मुंतखब किया है कल के प्रोग्राम में हम जरूर शामिल करेंगे, बहुत शुक्रिया। तो अब चलते हैं हम कराची, नॉर्थ नाजमाबाद पाकिस्तान, और इस हसीन जोड़ी को इनकी बचपन की यादों में। इनकी क्या, मेरा ख्याल इस गीत को सुनने के बाद बेशुमार लोग अपने बचपन की यादों में गुम हो जाएंगे। मुझे नौशीन गिलानी का एक शेर याद आ रहा है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ रिजवान और अम्बरीन, के कुछ नहीं मांगती मैं तुझसे ऐ उम्र रवां, मेरा बचपन मेरी गुड़िया मेरे जुगनू ला दे। गीत हाजिर है, कबूल कीजिए।

और दोस्तों ये पसंद थी रिजवान रिजवी उनके शरीक हयात अमरीन जहरा की कराची पाकिस्तान से। मेरी निगाह अभी पड़ी है, इन्होंने अदब के शहदाइयों और शेर के मतवालों के नाम एक तोहफा भी भेजा है जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं। साथ ही साथ अजहर हमारे बज़्म में शामिल हैं, ब्रेडफोर्ड की हसीन वादी से बेइंतहा खूबसूरत लिसनर हैं और खां साहब मेहंदी हसन खां साहब के मुरीद खास हैं। सो हम आपका तोहफा पेश करेंगे और तोहफा पेश करने से पहले हम कराची पाकिस्तान से आए हुए रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा के इस तोहफे को अदब के शहदाइयों और शेर के मतवालों के नाम कर रहे हैं। अब्दुल हमीद अदम, बहुत बड़ा नाम, उनकी एक खूबसूरत गजल आपके लिए मुंतखब की है और वो कुछ यूं है कि रास्ते कूचे जाना के हसीन होते हैं, रास्ते कूचे जाना के हसीन होते हैं, साहिब होश खराबात नशीं होते हैं, रास्ते कूचे जाना के हसीन होते हैं, साहिब होश खराबात नशीं होते हैं, ये नहीं इल्म कहाँ सामना उनसे होगा, ये नहीं इल्म कहाँ सामना उनसे होगा, ये तो मालूम है हमको वो कहीं होते हैं, ये नहीं इल्म कहाँ सामना उनसे होगा, ये तो मालूम है हमको वो कहीं होते हैं, तेरे वादे की हकीकत तो आया है लेकिन, तेरे वादे की हकीकत तो आया है लेकिन, आह वो लोग जो मजबूर यकीन होते हैं, तेरे वादे की हकीकत तो आया है लेकिन, आह वो लोग जो मजबूर यकीन होते हैं, और जख्म भर जाएं तो तकलीफ की शिद्दत कैसी, जख्म भर जाएं तो तकलीफ की शिद्दत कैसी, दर्द बढ़ जाए तो महसूस नहीं होते हैं। हासिल गजल शेर है साहब, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। जख्म भर जाए तो तकलीफ की शिद्दत कैसी, दर्द बढ़ जाए तो महसूस नहीं होते हैं, क्यों ना एक झूठी तसल्ली पे कनात कर लें, क्यों ना एक झूठी तसल्ली पे कनात कर लें, लोग कहते हैं अदम ख्वाब हसीन होते हैं। क्या मख्ता है साहब, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्यों ना एक झूठी तसल्ली पे कनात कर लें, लोग कहते हैं अदम ख्वाब हसीन होते हैं। बेइंतहा शुक्रिया अमरीन जहरा और रिजवान, आपका बहुत खूबसूरत इंतखाब है आपका। अब हम चल रहे हैं अजहर साहब के तोहफे की जानिब, जिनकी ये मोहब्बत और चाहत है कि ये अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाते हैं। आपके लिए मैंने आपके पसंदीदा खां साहब मेहंदी हसन खां साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफरत फरमाए, ये हसीन गीत मुंतखब किया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अजहर आपकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम। आमद का बेइंतहा शुक्रिया।

0: दोस्तों, ये गीत मुझे बेइंतहा पसंद है, बहुत पसंद है। और एक ज़माना था जब रिफ़त अब्बास, स्कूल का ज़माना था, बेंचों पे बैठ के हमारे दोस्त हमसे ये गीत सुना करते थे। और वो बहुत पुरानी बात है। बहरहाल, हम लोगों ने अपने फ़न का मुजाहरा स्कूल से करना शुरू किया था और बेंचें होती थी उसमें, बेंचों का भी अब तो लफ्ज़ बेंच सुन के लोग हैरान होते होंगे, उनके जहन में सिर्फ वो गार्डन वाली बेंच आती होंगी। हमारी क्लासों में बेंचेज होती थी और उसके साथ ही बेंच के साथ ही टेबल होती थी और टेबल के नीचे एक बाकायदा खाना होता था जिसमें आप पूरा बस्ता अपना रख सकते थे। और वो बेंचें जो थी वो हर क्लास में सबकी मखसूस बैठने की जगह होती थी। और क्या ज़माना था, क्या ज़माना था। तो वो बेंच जब वो हमारी हाफ टाइम हुआ करता था तो उसमें बहुत हमारे दोस्त थे जिन्हें गाने का शगफ था, तो वो उसी पे बैठ के और बजा के और गाना जो था वो होता था। उसी तरह से ये सिलसिला चला, आगे बढ़ा हिम्मत अफजाई की वजह से और फिर रेडियो पहुंच गए हम। स्कूल ब्रॉडकास्ट एक प्रोग्राम हुआ करता था जो कराची में लोग रहते हैं उन्हें याद होगा, 11:30 बजे, जिसमें मुख्तलिफ पूरे कराची के स्कूलों से लोगों को चूज़ किया जाता था और हेड टीचर चूज़ करता था और फिर वो दो लड़कों को रेडियो पाकिस्तान भेजता था जो नुमाइंदगी करते थे अपने उस स्कूल की और रेडियो ब्रॉडकास्ट में हिस्सा लेते थे। कोई गीत गा रहा है, कोई आवाज़ें निकाल रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। उसी में स्कूल ब्रॉडकास्ट से हमारे साथ फिर हमने बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया जिसे मुन्नी बाजी, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, वो मखर 2 फीट की थी, वो बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। और माजिद अली जो हमारे उस्तादों में रेडियो में शुमार होते हैं, बच्चों के भाईजान थे, उनके प्रोग्राम में हमने बाकायदगी से शिरकत शुरू की। वहीं हमारे दोस्त सलमान अलवी, जिनकी आज एक गज़ल में शामिल करूंगा, शहरयार साहब ने अभी फ़ोन करा और मैसेज भी मुझे मिला है क्योंकि आज उन्होंने कल के लिए गीत मुंतखब किया है, एक शायर एक गीत दो फनकार। ये लास्ट वीक है, ये बता दूं आपको इस सेगमेंट का। तो वो बता रहे थे, वो भी जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि आप बीच में जो बातें कर जाते हैं तो बहुत पुराने ज़माने में ले जाते हैं। और फिर जो क्लासरूम होता था वो इस कदर सजा हुआ होता था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार चारों तरफ होते थे। और क्या खूबसूरत बात थी इसमें, जो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था उस पर वाइट चौक से टीचर जो था वो पढ़ाया करता था और वो जो लिखते थे उसे सब नकल करते थे। अब तो मैंने तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंग्लैंड में भी 19 ईयर्स टीचिंग की है, तो वो स्कूल का ज़माना मुझे बड़ा काम आया क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड यहाँ पे भी होते हैं स्कूलों में, अब तो वाइट बोर्ड आने लगे हैं और उस पर वो दूसरा, पहले हमारे जब मैंने यहाँ टीचिंग शुरू की थी वही ब्लैक बोर्ड होते थे, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखना जो है वो हर एक के अरे गैर नत्थु खैरे की आवाज़ नहीं है, वरना लिखना यहाँ से शुरू करते हैं टेढ़ी लाइन यहाँ तक आ गई, जो यहाँ के अक्सर टीचर्स की लाइनें टेढ़ी हुआ करती थी। कमर्शियल का वक्त हो गया।
1: Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, बातों से बातें निकलती हैं, बात से बात निकलना इसी को कहते हैं, कि हम स्कूल के ज़माने में जब याद करता हूँ मैं कभी कभी, तो बड़ा अजीब सा लगता है। हमारे यहाँ एक नानी होती थी, जो हाफ टाइम में हम लोग स्कूल के अहाते के अंदर ही मुख्तलिफ ठेले खड़े होते थे, और वो नानी, पता नहीं आप लोग यहाँ पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा उसे हम लोग कहते थे चिल्ले, पतली पतली सी बारीक बारीक सी होती थी, उसके साथ वो हाथ की अपनी बनी हुई चटनी बना के लाती थी। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे ख्याल कोई 400-500 चिल्ले उनके निकला करते थे, लाइन लगा के लेना पड़ता था। बहुत बुजुर्ग थी, और वो लकड़ी का एक चौकोर सा तख्ता सा बना था, उस पर थोड़ी सी दीवार सी लगी हुई थी लकड़ी की, उस पर वो बैठ के ज़मीन पे वो चिल्ले फरोख किया करती थी, घर से बना के लाती थी। तो बिला मुबालका 400-500 चिल्ले लोग, क्योंकि दो चिल्ले से कम कोई खाता नहीं था, और दो चिल्ले आते थे मेरे ख्याल 8 आने के, और इस कदर लजीज चटनी होती थी उनके हाथ की कि लोग चिल्ले से ज़्यादा चटनी को पसंद करते थे, और वो ज़्यादा बना के लाती थी। जो बच्चा कहे कि नानी नानी, वो जगत नानी थी, ये नानी चटनी ज़रा सी और दे दीजिए। तो स्कूल के ज़माने से हम जब वो शुरू हमने किया, तो वहाँ पर सलमान अलवी भी बच्चों के ब्रॉडकास्ट, बच्चों के प्रोग्राम में आते थे, उसमें उस्ताद मोहतरम माजिद अली साहब और बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक मुन्नी बेगम जो थी, वो शो वो लोग करते थे। हम लोग जो आते थे वो अपना अपना काम किया और निकल गए, ये इतना काम होता था। तो अब हम चल रहे हैं खुशामदीद कहने नज़ीर अहमद साहब को, जो लैया गुजरात पाकिस्तान से, लैया पंजाब पाकिस्तान से हमारे हमराह मौजूद हैं। खुशामदीद। मैं सोच रहा था कि आज नज़ीर अभी तक हमारी बज़्म में शामिल नहीं हुए, हमेशा की तरह उनका वही पैगाम है, अस्सलामु अलैकुम आपके तमाम सामईन और नाज़रीन को, सदा सलामत रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप खुद बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, सेहत से रखे, और अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे। अब हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं ओल्डहम, जहां मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब मौजूद हैं, और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे नॉर्थ हॉल्ट लंदन, जहां मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम शहरयार साहब और उनके अहले खाना, और सुनना चाहते हैं एक गज़ल, मैंने आज अपने उसी यार की आवाज़ में रखी है, सलमान अलवी उनका नाम था। हम लोग मुख्तलिफ काम करते थे, ड्रामे, नज़में अल्लामा इकबाल की, और ये पढ़ना, और ये जो थे ये गाते नहीं थे उस वक्त, ये सिर्फ बैंजो बजाते थे, और बैंजो पर इस कदर खूबसूरत नगमात इनसे फरमाइश कर दी जाती थी बच्चों के प्रोग्राम में, कि आज बच्चे आपसे, उस ज़माने में ये सिलसिला तो था नहीं इतना टेलीफोन का, खतूत हमारे प्रोग्रामों के बाद मिलते थे प्रोड्यूसर्स को, फिर वो खतूत लेके आते थे फाइल साथ, और अंडरलाइन किया हुआ होता था कि भाई फलाने आर्टिस्ट की ये बात सुनना चाहते हैं सामीन। और फ़ोन का तो सिलसिला तस्वुर ही नहीं था, फ़ोन का सिलसिला तो इवन ये कि हम कोयटा में रहे बरसों, वहाँ पे भी डायरेक्ट फ़ोन कोई प्रेजेंटर नहीं वसूल करता था, ख़त आपका एक खाना बना होता था, उसमें आपके नाम जो खतूत आते थे वो प्रोड्यूसर, ड्यूटी ऑफिसर एक पोस्ट थी रेडियो पाकिस्तान में, जिनसे हम रिकॉर्ड इशू कराते थे, टेप्स स्पूल वगैरह इशू कराते थे, साइन करके देते थे, फिर जब प्रोग्राम ख़त्म करते थे तो वो रिकॉर्ड्स और स्पूल्स जो हैं वो चेक करके साइन करता था ड्यूटी ऑफिसर, के तमाम चीज़ें वापस मुझे मिल गई हैं। तो ड्यूटी ऑफिसर की एक ड्यूटी ये भी थी कि वो तमाम फ़नकारों के नाम आए हुए खतूत को उनके खानों में रख देता था, और प्रोग्राम शुरू करने से पहले, जैसे कल प्रोग्राम करना है तो आज वो खतूत उन तक पहुंच जाते थे, और फिर प्रोग्राम उसी हिसाब से तरतीब दिया जाता था।
तो ये रेडियो पाकिस्तान का तो बहुत ही क्या बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो पहले चलते हैं हम ओल्डहम, अयूब चौहान साहब का तूफान की नज़र करते हैं, उसके बाद हम आपको नॉर्थ हार्ट लंदन लिए चलेंगे और अपने उस दोस्त की आवाज़ में जो एक ज़माने में सिर्फ बैंजो बजाता थे, आज वो बहुत बड़े फनकार हैं और दुनिया उन्हें सलमान अलवी के नाम से जानती है। बेइंतहा खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। उनकी एक गज़ल अपनी पसंदीदा शहजाद साहब मैंने आपके लिए मुंतखब की है, लेकिन अभी चलते हैं ओल्डहम और पेश करते हैं अयूब चौहान साहब की पसंद। आपको पता है कि इनकी पसंद नहायत अरफा और आला होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के, और जब ये गीत लिखाते हैं तो फिल्म का नाम भी बताते हैं कि इस फिल्म का ये गीत है। अल्लाह आपको नज़र-ए-बद से बचाए अयूब चौहान साहब, आपके दाढ़ के दर्द को अपने करम से अपने फजल से ठीक फरमा दे।

रियासत साहब भी तशरीफ ले आए हैं, उनका भी गीत हमें शामिल प्रोग्राम करना है, जो अपने अहले खाना के साथ कहीं बाहर गए हुए थे और हम जरूर शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम आपको लिए चल रहे हैं नॉर्थ हॉल लंदन, जहां सिराज मुनीर साहब और उनके अहले खाना मेरी पसंद की गजल सुनने के मुंतजिर हैं। मैंने आपके लिए, क्योंकि आज जिक्र हो रहा था रेडियो पाकिस्तान कराची के हवाले से और बच्चों के प्रोग्राम के हवाले से, तो मुझे याद आया कि हमारा ये खूबसूरत फनकार की ये गज़ल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं जनाब शहरयार साहब और उनके अहले खाना की नज़र करूं। देखिए, ये देखें, बड़ी अजीब बात है कि तमाम ही लोगों से रابطہ रहा मेरा, लेकिन सलमान से मुझे मिले हुए बिला मुबालगा 30-35 साल हो गए। पाकिस्तान जाना होता ज़ाहिर है कराची, लेकिन इस कदर, एक तो बाकायदगी से जाना जब शुरू हुआ जब तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी कुछ, अब तो अल्लाह का बड़ा करम है सो ना मिल सका, लेकिन ये वाहिद शख्स है जिससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। बाकी तमाम उसातिज़ा से रेडियो पाकिस्तान जाना आना रहा, मुलाकात हुई, सलमान से नहीं मुलाकात हुई। सलमान मियाँ, जहाँ भी हो खुश रहो और बहुत खूबसूरत गज़लें गाते हो, बहुत फ़ख्र होता है कि इस शख्स के साथ हमने प्रोग्राम किए हैं।

तो इतना ही गीत हमारे पास मौजूद था जो हमने नज़ीर अहमद साहब रैया आपकी नज़र किया। शकील भाई, आप कमर्शियल के बाद ट्राई करें और मैं ताज को पकड़ के रखूँगा और आपसे आपकी खूबसूरत कलाम ज़रूर सुनेंगे। कमर्शियल के बाद प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मैं तैयारी मुकम्मल कर ली, मैंने अभी रीचेक किया है। अब इंशाल्लाह आपका जो आवाज़ है वो लोगों तक भी पहुँचेगी और आपको ये कुछ नया जो टेलीफोन तनसीब किया है इसमें कुछ ख़राबी, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं और शाह साहब भी जानते हैं और उन्होंने इसकी शिकायत भी कंपनी से की है। वो इंशाल्लाह इस गड़बड़ को दूर कर देंगे। और कहते हैं कि एकदम ये पैगाम आता है कि ये नंबर कुछ हम इस पर बात नहीं कर सकते, आप यूँ इस किस्म का कोई पैगाम, कोई फिक्र की बात नहीं है, हमने इसकी वीक पॉइंट पकड़ लिया है, वो हम करेंगे और शकील भाई से आपकी बात ज़रूर कराएंगे, लेकिन कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद। ठीक है, मुझे यकीन है कि वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मुझे फ़ोन यकीनन करेंगे।

0: Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

200 गजल उसने शेरी अब इख्तिताम की जानिब बढ़ा है। अभी चंद लम्हे पहले हमारे मोहतरम लिसनर जनाबे ए डी चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं और मोहब्बत भरा सलाम आप तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत भी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल इख्तितामी लम्हात हैं, कहते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत आप मेरे नाम कर दीजिए, मैं मोटरवे M62 पर मौजूद हूँ, माजत खा हूँ कि बहुत ताखीर से आपको फ़ोन किया। कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। आज का आखिरी तोहफा हम अपने मोहतरम शकील साहब के नाम करेंगे, लेकिन अभी तो हम चलते हैं M62 पर मौजूद AD चौधरी साहब के तोहफे की जानिब। कबूल कीजिए और ज़रा जल्दी तशरीफ़ ले आया करें हज़रत।

0: On Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट,
9: 01274201679। UK।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
13: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
4: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
2: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
4: safewayrider.co.uk।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
6: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी।

أكبر. أشهد أن لا Shut up.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: जी पर्स चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस, विंडोज यॉर्कशायर।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
1: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffield Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95 VR, 01274491442।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
6: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
1: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
6: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
9: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला

0: cateringservices.uk।
1: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
2: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
1: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, PD9 5VR 01274491442।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
2: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
3: टैक्सी लाइसेंस,
2: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
2: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
1: 33 Wetley Lane, Bradford 01274201679।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग services.uk।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: रहा।
1: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online.

0: and Inclus to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
4: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
3: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
4: मैनिंगम सुपर स्टोर
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की खुशखबरी
6: अब नीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड ब्रैडफोर्ड
6: जब चाहे कॉल मिलाएं
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर
5: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
9: 01274201679 UK
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स

0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पैल सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
0: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 078.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: बैफुट से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी
6: अब मीरपुर ट्रेवल्स एंड टूर्स आपके लिए लाए हैं
5: सस्ते फ्लाइट टिकट्स वीजा सर्विसेज
6: उमरा ज़ियारत और हॉलीडे पैकेज
5: तेज तरीन कार्गो और मनी ट्रांसफर सर्विस का बेहतरीन इंतजाम
6: यानी आपके लिए मुकम्मल सफरी सहूलियात का वाहिद मरकज
7: मीरपुर ट्रेवल एंड टूर्स 391 ग्रेट होटल रोड बैफुट
6: जब चाहे कॉल मिलाए
5: 01274781168
7: मीरपुर ट्रेवल्स
8: मीरपुर नवे डेमो
5: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
6: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
9: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
9: मंगला केटरिंग 77 अथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
6: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
13: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.